नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खैर मक्तम, राम राम, कैसे हैं? जबरदस्त, मस्त। हाँ, बस देखिए ऐसे ही हंसते खेलते रहा करिए, ऐसे ही हंसते खेलते सुबह की शुरुआत किया करिए, क्योंकि ये शुरुआत जो आपकी मस्ती के साथ होती है, खुशियों के साथ, आपके मुस्कुराते हुए लबों के साथ होती है ना, ये शुरुआत जो है वो जिंदगी की बेस्ट शुरुआत बन जाती है। और हर एक बेस्ट शुरुआत ही आपकी जिंदगी को पॉजिटिव और हेल्दी बनाती है, राइट? सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो जिंदगी है, आप हैं तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, आप हैं तो जिंदगी मुस्कुरा रही है आपकी। और इसी बात के साथ एक और ट्रैक की शुरुआत के साथ शुरू करते हैं आज का इट हैपेंस। जी हाँ, मैं हूँ रेडियो ब्रिस्वानी पर आपकी सताक्षी आपके साथ, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, आगे बढ़ रहे हैं एक और ट्रैक के साथ।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप दोस्तों, रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी आपके साथ है और ये सफर जो है ये हम दोनों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इट हैपेंस में हमारी आपके साथ कई खूबसूरत और बेहतरीन बातें इस सफर में चार चांद लगा देती हैं। वैसे इस सफर को आगे लेकर चले उसके पहले विश कर देते हैं उन्हें जिनके लिए ये पल ये दिन बहुत ही खास और स्पेशल है। तो हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यूं ही आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आपकी जिंदगी में विशेष जो है वो दस्तक देती रहें, आपको ऑनर्स मिलते रहें, प्राइजेस मिलते रहें, आप जिंदगी को हमेशा पॉजिटिव वे में जिए। इसी विश के साथ विश करती हूँ उन्हें जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, तो शादी के सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। भाई जिंदगी के कितने साल भी बीत जाएं, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो तू तू मैं, वो आर्गुमेंट्स, लेकिन जिंदगी का साथ हमेशा बना रहना चाहिए। एक दूसरे की कमी अगर खल रही है आज भी आपको दूर होने पर, इसका मतलब मोहब्बत जिंदगी के कितने साल भी गुजर गए हैं आज भी जिंदा है। और वो जिनकी आज जिंदगी में कुछ खास होने वाला है या जिनकी लाइफ में कोई स्पेशल डे है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम ही अगला ट्रैक है, इसे सुनिएगा और सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर जी आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आपके लिए खास स्पेशल और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे देखा जाए तो जब हम ठान लेते हैं ना कि हमारा ये पल खास होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, तो कई बार वो पल वाकई बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन हो जाता है। कई बार बस हमें ये सोचने की जरूरत होती है कि यार ये वक्त जो है ये मेरे लिए खास होना चाहिए। अब कुछ ऐसे तो करते हैं ना हम तब जब हम अपने किसी फेवरेट इंसान का कुछ लम्हा खास बना रहे होते हैं। सपोज किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है आपके सर्कल में, तो हम कोशिश करते हैं ना कि यार आज हमारा मूड चाहे जैसा भी है इस बंदे का ये पल तो खास बनाना है। ठीक वैसा ही हमारी अपनी लाइफ में भी होता है। अगर हम चाहें तो हम अपना हर लम्हा बहुत ही बेहतरीन और खास बना सकते हैं। तो ये तो यार मॉर्निंग का वक्त है ना, तो इस वक्त को तो खास बनाना, स्पेशल बनाना बनता है, क्योंकि इस वक्त को जब आप बेटर बनाते हैं अपने लिए तो आपका पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है, और उस खुशनुमा दिन के साथ फिर एक एक दिन करके महीना, साल और जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए इसी बात पर एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ अभी इट हैपेंस में, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701।

रिस्वानी पर इट हैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग कई बेहतरीन और खास गाने भी। मल्टीटास्किंग, हाँ ये एआई का जमाना है और हम इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं कि मल्टीटास्किंग को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। लक्ष्य बोले तो गोल तो कहना ये है कि बॉस मल्टीटास्किंग ठीक है कि अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम अपनी मैन पावर को कम कर देते हैं। हम जितना कुछ कर सकते हैं ना उसे हम कम कर देते हैं। तो अगर वही एनर्जी हम एक काम पर लगाते हैं और पूरे फोकस होकर वो काम करते हैं ना, तो शायद हम अपनी एनर्जी को ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए एक वक्त में एक ही काम करिए और पूरी एनर्जी पूरे फोकस के साथ कीजिए। आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह उसे परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए ध्यान रखिए इस बात का कि आपको मल्टीटास्किंग पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, एक काम को 100% देना है ताकि उस काम से आप अपनी पहचान भी बना सके और उस काम को आप 100% देकर उसे खूबसूरत बना सके। इसी बात पर एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 17।

बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings.
1: वेलकम बैक, इट हैपेंस में आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर दोस्तों, और अभी हम हैं गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि गानों की हैट्रिक हमारा वो सेगमेंट है जहाँ तीन बैक टू बैक ट्रैक्स लेकर हम आपके लिए हाजिर होते हैं। तो चलिए आज के इस पहले ट्रैक को एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ।

की हैट्रिक में सताक्षी के साथ इस वक्त आप हैं और गानों की हैट्रिक का ये है लास्ट ट्रैक। इसके उस पार इट हैपेंस में होंगे आपके साथ ढेर सारी और भी बातें। कीप लिसनिंग टू आपका अपना रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

रेडियो परिस्वानी पर इस वक्त आप अपने ब्रेकफास्ट शो को सताक्षी के साथ सुन रहे हैं। जी हाँ, ये वक्त हम आपके लिए खास बना रहे हैं, इस वक्त को हम आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए आपकी मॉर्निंग्स बहुत ही स्पेशल होती है। लेकिन बॉस देखिए, मॉर्निंग स्पेशल उनके लिए होती है जो सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि बाकियों का क्या है ना कि दो दो मिनट देखते हैं कि यार कब घड़ी बिल्कुल कह दे कि अब अगर एक मिनट भी और लेटे रह गए तो बस ऑफिस में बच जाएंगे 12, काम पर हो जाएगी देर, है ना। उसके बाद उनकी आंख खुलती है कि बस जल्दी जल्दी से अब भागकर सारे काम करने। वहीं वो लोग जो सुबह आराम से उठ जाते हैं, कोई किचकिच नहीं करते वो उठने में, वो हर एक काम को बहुत ही स्मूथली खत्म करते हैं। उनके पास एक बढ़िया सी कॉफी सुबह होती है जिसे वो अपने साथ एंजॉय करते हैं। एक्सरसाइज के लिए उन्हें परफेक्ट टाइमिंग मिल जाती है, उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया टाइमिंग मिल जाती है, और टाइम से वो घर से निकल भी जाते हैं ताकि अगर बाहर रश वश भी हो, कोई रैली हो रही हो, कोई रश हो, है ना। आजकल तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है यार, सारी पार्टीज बदल रही है, गवर्नमेंट बदल रही है, देश बदल रहे हैं, सत्ताएं बदल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है जिंदगी में। तो ऐसा कुछ अगर उनको फेस करना पड़े तब भी वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाए। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, शेयर कीजिए हमारे साथ, और ये अगला ट्रैक भी एंजॉय कीजिए। सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

रेडियो प्रस्थानी पर आप सुन रहे हैं टैपेंस। जी हाँ, सताक्षी के साथ आप इस सफर को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए, ब्रेकफास्ट की बात हो रही है तो ब्रेकफास्ट की बात ही कर ली जाए, क्योंकि भैया ब्रेकफास्ट शो है और ब्रेकफास्ट के नाम के बिना ये शो खत्म हो जाए या नहीं हो सकता ना। तो आज क्या हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत सुबह सुबह अगर आप इंडियन ब्रेकफास्ट प्रेफर करते हैं, है ना, और आपको बढ़िया लगता है, तो पोहा जो है वो बहुत ही हेल्दी हो सकता है, या फिर आप चिल्ला बनाकर खा सकते हैं। ओट्स चिल्ला, बेसन चिल्ला, ये आपको एक बढ़िया हेल्दी डाइट भी देता है और एक इंडियन रेसिपी भी है ऐसी, जिसके साथ आपका टमी भी फुल रहता है और आप हेल्दी भी फील करते हैं। हैवीनेस से अगर आप बचना चाहते हैं, मतलब कुछ बहुत हैवी सुबह नहीं खाना है, तो आप बढ़िया सा फ्रूट्स सैलेड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग ले सकते हैं, या फिर सिर्फ आप पोहा खाएं और आपका जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। ओट्स आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आपको एक हेल्दी डाइट देता है। मिल्क सिर्फ पीकर जाना, जो बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो खाली दूध पीकर घर से निकल जाते हैं, खासकर बच्चों के लिए पेरेंट्स ये करते हैं। तो देखिए, एक चीज बहुत ध्यान रखिए कि आप अक्सर बच्चों को एक फ्रूट और मिल्क का एक ग्लास दे देते हैं, वो मत कीजिए, बिकॉज दूध जो है वो कई सारे फ्रूट्स के साथ नहीं जाता है, है ना, फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। तो दूध सुबह सुबह जरा अवॉइड कीजिए, बच्चे जब दोपहर में आते हैं घर, या फिर रात में सोते समय कई लोग जब दूध लेते हैं, सबसे बढ़िया टाइम जो होता है, अगर आप दूध ले रहे हैं तो फिर फ्रूट्स ना लें मॉर्निंग में, है ना, वरना दोपहर का या रात का वक्त जो है आप दूध पीकर खाली और थोड़ा सा वॉक करके आप सो सकते हैं, तो वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन फ्रूट के साथ दूध देने से बचे, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके साथ दूध अवॉइड करना चाहिए, है ना, मिल्क को स्किप करना चाहिए। तो ध्यान रखिए इस चीज को और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी मुस्कुराइए और खिलते रहिए। एंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ ये अगला ट्रैक अभी, और सुनते रहिए टैपेंस रेडियो प्रस्वानी पर।

मते अनुसार राष्ट्रपति संसद की मंजूरी तो बिना ईरान विरुद्ध कोई भी सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। दिलचस्प गल है कि चार रिपब्लिकन नेतावान ने भी अपनी पार्टी तो वक हो के इस मते के हक विच वोट पाई है। उधर इसे दौरान उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर तो दुनिया को अपने परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करदे परमाणु बंबा लई ईंधन तैयार करने वाले नवे कारखाने का उद्घाटन किया। इस मौके किम ने देश की परमाणु समर्था तेजी वधाउण का अपना पुराना संकल्प दोहराया है जिसने खेतर विच तनाव होर वधा दिता है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी अनुसार इस नवे यूरेनियम संवर्धन प्लांट विच वधेरे आधुनिक वधिया तकनीक की वरतों की गई है। मीडिया वालों जारी तस्वीरां विच एक विशाल हाल दिखाई दे रहा है जिथे हथियार ग्रेनेड दे यूरेनियम नूं तैयार करन लई वड्डी गिनती विच सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हन। हालांकि यह प्लांट किथे स्थित है, इसने कदों काम करना शुरू करना है, इस बारे अजे तक कोई जानकारी नहीं है। रुकरदे पंजाब दे वल जिथे चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सैक्रेट नूं एक बार फिर तो बंब नाल उड़ाउण दी धमकी दित्ती गई। इस दे नाल ही पंजाब दे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थानां नूं भी बंब नाल उड़ाउण दी धमकी मिली है, जिस तों बाद सुरक्षा एजेंसियां विच हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी अनुसार सवेरे चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सैक्रेट दे संबंधित अधिकारियों नूं एक ईमेल मिली सी, भेजण वाले ने धमकी दित्ती है कि उह सैक्रेट दी इमारत विच बंब धमाके करेगा। सैक्रेट तों इलावा इस धमकी भरी ईमेल विच पंजाब दे कई इतिहासिक अते धार्मिक स्थानां ते हमले करने की भी गल कही गई है। उधर उत्तरी पछमी नाइजीरिया विच बंदूकधारियों ने एक स्कूल कॉम्पलैक्स के बाहर एक घर विच तावा बोल के सात विद्यार्थियों नूं अगवा कर लिया। पुलिस ने इस संबंधी जानकारी दी है। पुलिस बुलारे ने एक बयान विच कहा है कि यह घटना बुधवार तड़के संघर्ष प्रभावित जमफारा राज्य के कौरा नमोदा खेत्र विच वापरी। बुलारे ने कहा है कि तुरंत स्पष्ट नहीं होया कि विद्यार्थियों नूं कित्थे ले जाया गया सी, पर बाकी छे विद्यार्थियों नूं बचाउण लई यतन जारी हन। उधर पंजाब की सियासत विच फिर तो वड्डा उल्ट फिर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस विच वापसी नूं लैके चर्चावां दा बाजार गर्म है। इस दौरान हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा के एक बयान ने इन्हां चर्चावां नूं होर हवा दे दित्ती है। हुड्डा ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे संपर्क विच हन। भुपिंदर हुड्डा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे संबंध काफी पुराने ते गूढ़े हन। हुड्डा ने कैप्टन नूं कांग्रेस दा सीनियर नेता दस्सदे संपर्क विच होने की गल कही है। इस कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पिछले कुछ समय तो कांग्रेस की तारीफ करना भी उन्होंने वापसी के संकेत वजो देखा जा रहा है। सूत्रों अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा की कार्यशैली तो खुश नहीं हन। उन्होंने प्रधान की चोण विच उन्होंने नजरअंदाजी भी हुई है, यह भी गल सामने आई है उन्होंने नाराजगी की। बाकी वक्री कार्य संस्कृति निजी दुख सुख गठजोड़ का मुद्दा, इस सारिया गल्लां उन्हां दी नाराजगी दियां निकल के सामने आईयां ने। दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद एक इंटरव्यू विच फिलहाल कांग्रेस विच जाण तों इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंदरूनी तौर ते बहुत वड्डी है अते उसका पंजाब विच सरकार बनाउण दा कोई चांस नहीं है। ताहुं तक दी अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी brisoni@brisoni.com। इस नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज ज़रिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो Brisoni 101। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तक लई दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।

0: प्योर सेलिब्रेशन यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
4: Anuj,
3: a number, it's a
4: statement. Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. Commercial matter ho, jaise lease ka mamla, business ho, ya phir gharon ki buying selling ka mamla. और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड

वेलकम आदाब जी सत श्री अकाल जी। तुसी बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 FM ते जी आर जे संदेश अलग दराल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इहनां गल्लां नूं लगाउणा असी पंजाबी गीतां दा तड़का। तां तुसी की करना, तुसी कुछ नहीं करना, बस तुसी अपना फोन चकना ते तुसी साडे नाल जुड़ना शुरू कर देना। तां किवें जुड़ना है तुहानूं पता है ना, रेडियो ब्रिसवानी 101 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया थोड़ी मर्जी है पर जुड़ना तो देखो मैं यही कहूंगी कि कंपलसरी है। तो बड़बड़ दे नाल जुड़ना शुरू करो। मैं हुणे वापिस सुनी है करन दे लई ढेर सारियां गल्लां ते सुनाउण दे लई सोहणे सोहणे गीत। उन्हां समां इन्हां गीतां दे नाल कर लैणे शुरुआत।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी।
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी अनुजी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिसौनी 101.1 जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो माधुरी दीक्षित नूं परदे ते देख के ना अज भी एक अपनापन महसूस हुंदा है। कदे हम आपके है कौन दी निशा ते कदे दिल तो पागल है दी पूजा ते कदे थक थक गल, पर मां बहन विच ना वो कुछ अलग ही नजर आई है। उन्हां दा अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है जिस विच उन्होंने हमने बहुत मतलब इस तरह के किरदार निभाए हैगे जिहड़े बहुत घट देखे असी। इत्थे वह ना किसी प्रेम कहानी का हिस्सा है ना किसी आदर्श मां का किरदार निभा रही है, इत्थे वह एक विधवा महिला के किरदार विच है जो अपने हिसाब नाल जिंदगी जींदी है। तो शायद यही गल लोगों नूं सब तो ज्यादा खटकती है। तो हुण मैं जो सोचा कि जदों यह फिल्म रिलीज़ हो चुकी हैगी है तो क्यों ना इसका थोनों मैं रिव्यू दे दा, है ना, बनता है ना देना रिव्यू। तो चलो फिर देखते हैं कि की कहती है पब्लिक इस फिल्म के बारे में।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 एम ते जी आठे संदेश अलग दे नाल सिपाणे होए। सब तो पहला गल कर लैने आ कहानी दी कि कहानी किस तरह की हैगी है। तो देखो माँ बहन की कहानी कुछ इस तरह की है कि रेखा यानी कि माधुरी दीक्षित के किरदार का नाम है रेखा। आमी सोसायटी विच चर्चा का हिस्सा बनी रहती है। विधवा है, सजदी संवरती है, खुल के बोलती है तो अपने हिसाब नाल जिंदगी जींदी है। यही गल नेड़े दे लोकां नूं पसंद नहीं हुंदी। लोकां ने उन्हां दे बारे विच अपनी अपनी राय बना रखी है। दूजे पासे उन्हां दी वड्डी बेटी जया यानी कि तृप्ति डिमरी अपनियां परेशानियों विच उलझी हुई है। वह मां बनना चाहती है, IVF करवाना है, इस दे लई 5.5 लाख रुपए चाहिए। आर्थिक दबाव है, निजी जिंदगी दियां उलझणां वक्खरियां। इस विचकार रेखा दा घबराए हुए फोन आता है। जया ते उन्हां दी भैण सुषमा यानी कि धारणा दुर्गा तुरंत मां दे घर पहुंचदियां ने। घर दे अंदर दा नजारा देख के तो उन्हां दे होश उड़ जांदे ने। कमरे विच गुप्ता जी यानी कि रवि किशन पए हुंदे ने। उन्हां नूं इक यही लगता है कि उन्हां दी मौत हो चुकी है। रेखा दा कहना है कि एक हादसा है, पर मामला इना सीधा नहीं हैगा। पुलिस नूं खबर करन दी बजाय मां ते बेटियां पहला खुद ही स्थिति संभालन दी कोशिश करदियां ने। मुसीबत तद होर वज जांदी है जद सामने गुप्ता जी दे घर विच उहनां दी बेटी दी सगाई दीआं रस्मां चल रहीआं हुंदीआं ने। मेहमानां दा आउणा जाणा लग्गिआ रहिंदा है, तां जे विच इक छोटी जी गलती भी वड्डा बवाल खड़ा कर सकदी है। इस बाद झूठ गलत फहमियां ते लगातार बिगड़दे हालात कहानी नूं अगे वधाउंदे ने।

हाँ जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसाने वन सरम वन एम ते जी अच्छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। देखो हुण कहानी की गल कर ली हैगी है तो हुण गल एक्टिंग की कहानी बनती हैगी है ना कि इस विच एक्टिंग किस तरह की हुई है। तो फिल्म की सब तो वड्डी ताकत इसके कलाकार ही हैगे ने। माधुरी दीक्षित लंबे समय बाद अजिहे किरदार विच नजर आई है जिथे उन्होंने खुल के खेलण का मौका मिले। रिकर के किरदार विच मजेदार भी है तो भावुक भी है, कई जगह हैरान भी करती है। सब तो चंगी गल यह है कि वह किरदार नूं जरूरत तो ज्यादा नाटकीय नहीं बनाउंदी। फिल्म दे कई यादगार सीन्स उन्हां दे हिस्से आए हैगे ने ते वह इस विच पूरी तरह असर छड़ती है। तृप्ति डिमरी की जी गल करिए तृप्ति डिमरी फिल्म की सब तो प्रभावशाली परफॉर्मेंस दिंदी है। जय के किरदार विच उन्हां दी बेचैनी झुंझलाहट ते थकावट लगातार महसूस हुंदी है। कई सीन्स विच वह बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी अपने किरदार की जिहड़ा मेंटल स्टेटस है ना वह दर्शा जाती है। फिल्म का इमोशनल पक्ष काफ़ी हद तक उन्होंने मोढ़ियां ते टिकया है तो वह इसनों चंगी तरह नाल संभालती भी हैगी है। वह धारणा की गल करिए धारणा दुर्गा भी वधिया काम करती है तो कहानी विच जरूरी एनर्जी लैके आती है। माँ ते भैण दे विचकार फसे उन्होंने किरदार विच कई मजेदार पल है कि नहीं। रवि किशन भी प्रभाव छड़दे ने, उन्हां दा किरदार कहानी दे अहम मोड़ां विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। परेश रावल बहुत ही छोटे रोल विच है कि नहीं, उन्हां दा किरदार छोटा थोड़ा अधूरा जिहा लगता है। गीतांजलि कुलकर्णी हमेशा की तरह भरोसेमंद, अरुणोदय सिंह जतिन सरना ते बाकी कलाकार भी अपने हिस्से दे काम नाल पूरी ईमानदारी करते हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: जी तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसौनी वनसर वाले तो जी आप जिस संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। कोई भी कहानी हैगी है ना वो उस डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन किस तरह का होया है, क्योंकि वधिया डायरेक्शन की कहानी हमेशा वधिया ही हुंदी है। तां इस दे जे डायरेक्शन की आप गल करिए ना तो सुरेश त्रिवेणी की सब तो वड्डी खूबी उन्होंने किरदार ही है कि नहीं। फिल्म विच भी वह अजिहे लोगों की कहानी कहते हैं जो असली लगती है। रेखा जय ते सुषमा सिर्फ कहानी नूं अगे वधाउण वाले किरदार नहीं बल्कि अपनी अपनी परेशानियां ते कमजोरियां दे नाल नजर आते हैं। फिल्म की एक दिलचस्प गल यह है कि रेखा के किरदार के जरिए समाज की सोच का हल्का अच्छा तंज किया गया। एक विधवा महिला जो अपने हिसाब नाल जिंदगी जींदी है, स्लीवलैस ब्लाउज पाउंदी है ते किसी की परवाह नहीं करती, वह पूरी कलोनी की नजर की समस्या बन जाती है। फिल्म बिना भाषण दिते इस सोच नूं सामने रखती है। डार्क ह्यूमर भी कई जगह अपना काम करता है, खासकर उस सीन्स जिथे तीनों महिलावां हालात संभालने की कोशिश विच उलझिया हुई है कि ने। इन स्थितियां विच कई मजेदार पल भी निकल के सामने आते हैं।
1: मुंडा साधुआ दा

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
3: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स। तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
2: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
4: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण गल स्क्रीन प्ले दी भी कर लैने आ। तां देखो, हालांकि फिल्म दा स्क्रीन प्ले हर जगह एक जिहा मजबूत नहीं है, इंटरवल तों बाद रफ्तार थोड़ी हौली पैंदी है, कुछ हिस्से जरूरत तों ज्यादा खिंचे होए लगते ने। फिल्म समाज, रिश्तिआं तों महिलावां नूं लै के बनी धारणावां दीआं कई गल्लां छेड़दी है, पर उस विच उहदी कुछ होर गहराई नाल दिखाया जा सकता सी। इही वजह है कि अपने विचार होने के बावजूद फिल्म हर जगह उन्ना असर नहीं पाती जिन्नी की उम्मीद बनाती है।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q-Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद कॉल नाउ ऑन 04111270035 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपरवर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
2: कुछ दम नहीं है बिल्कुल मजा नहीं आया
3: किसी दिन घर आना असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें
2: कहाँ यार आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है
3: किस दुनिया में हो भाई क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से 99.9% प्योर मिल्क फैट से और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं
2: मुझे तो पता ही नहीं था अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर याद रहे 04006444355 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है

0: बचते।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
3: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नूं छू जाण वाली अते रूह नूं हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
4: देखो सच बता दो।
5: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनूं सच्ची कुछ नहीं पता।
3: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नूं तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love Thee Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love Thee Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
7: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: Mixing in the house.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसौनी 101 एम ते जी आर छे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण गल करदे आ कि फिल्म नूं देखिए या ना देखिए। देखो मां बहन परफेक्ट फिल्म पूरी परफेक्ट नहीं हैगी, पर मनोरंजन दे हिसाब दे नाल सही है, एंटरटेन करूगी तुहानूं। माधुरी दीक्षित ते तृप्ति टिमरी इस दी सब तो वड्डी ताकत है ते डार्क कॉमेडी दा अंदाज फिल्म नूं अलग पहचान दिंदा है। दोवां ही थावां दे कुछ हिस्सिआं नूं संभाल लैंदियां ने दोनों कलाकार, तीनों ही कह सकदे आ, जिथे लगदा है कि कहानी थोड़ी जी कमजोर हुंदी जा रही है। जेकर तुहानूं किरदारां ते आधारित कहानियां ते डार्क कॉमेडी पसंद आ ते मां बहन तुहानूं निराश नहीं करूगी। कुछ कमियां होण दे बावजूद उन्हां फिल्मां विच शामिल है जो भीड़ तो वख नजर आउंदियां ने ते अंत तक तुहाडा ध्यान हैगा जिहड़ा बनाई रखदियां ने।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम. लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0441270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 0441270035. रिमेम्बर द नंबर इज 0441270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.

न बदला मैं, न बदला वो, न बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 04026510455 पर, या फरजाना को 04014282488 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

सौ पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप सब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज है वो दिन, आज है वो दिन जिसका हमें इंतजार था बरसों से। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो गया? वेल या आई नो थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक हो गया, बट अगर हम आज ड्रामेटिक नहीं हुए तो कब हुए? आज हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में, आज हमें स्ट्रेस भी नहीं है और आज हम ड्रामेटिक भी हो सकते हैं। मतलब इतनी सारी बॉलीवुड की मूवीज देखने के बाद थोड़ा तो ड्रामेटिक होना बनता है। अगर आपको थोड़ा भी ड्रामेटिक होना नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है जो आपने इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज देखी है। सो 100 सालों बाद बेशक हमने इंतजार नहीं किया हो और ये दिन हमें ना मिला हो, हर वीकेंड जो है हमें ये दिन मिल जाता हो, लेकिन फिर भी हमें जो कदर करनी है इसकी और जो अहमियत है इसकी वो किसी भी बहुत ही इंतजार किए गए फेस्टिवल से पीछे नहीं है, से अलग नहीं है। सो मैं इतना ही कहूंगी कि हैप्पी फ्राइडे आप सबको। जी हाँ, फ्राइडे आ गया है, मतलब सुकून आ गया है, मस्ती आ गई है और पार्टीज आ गई हैं। फ्राइडे की पार्टीज हर जगह दुनिया के हर कोने में फेमस है। आप मुझे बताइए क्या आप लोग भी पार्टी करना पसंद करते हो? जी हाँ। और इसी के साथ आइए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम की शुरुआत होगी ऑफकोर्स एक हेल्दी रिचुअल के साथ। और वो हेल्दी रिचुअल क्या है? डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, लंबी गहरी सांसों के साथ करेंगे स्वागत आपका। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, एकदम ऐसा लगता है जेन मोड में चला जाता है इंसान। मतलब एकदम यूनिवर्स की वो खूबसूरत सी आवाज आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती है जब आप गहरी लंबी सांसें यानी कि डीप ब्रेथ प्रैक्टिस करते हो। सो ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसा फील होता है। और आइए, जब हमने अपने आप को इतना तैयार कर ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं और बढ़िया सा गाना आपको सुनाते हैं जो कि है 100 आसमान फ्रॉम द मूवी बार बार देखो। भाई क्या बढ़िया गाना है, अरमान मलिक की आवाज में, राइट? सो बढ़िया गाना तो चाहिए ही क्योंकि फ्राइडे का इवनिंग वाइब है। इवनिंग वाइब है पर नॉर्मल इवनिंग वाइब नहीं है, हमारा शो है आज फ्राइडे का, तो मजेदार गाने तो होने ही चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की ओर, क्योंकि वीकेंड आ गया है। आज फ्राइडे है और वीकेंड जो है वो आ गया है। सो ऑफ कोर्स वीकेंड पे हम क्या कर सकते हैं, किस दिन हम बाहर जा सकते हैं, किस दिन हमें घर पे रहना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे प्लान्स को, हम कितना भी उसको नकारने की कोशिश करें, एक्सेप्ट इट और नॉट, या मौसम यानी कि वेदर करता है इफेक्ट हमारे प्लान्स को। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कितना है मैक्सिमम टेम्परेचर आज और कितना रहा। 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 19.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है और फील आपको हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको फील हो रहा है और 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप रात में देख पाओगे। आप बोलोगे कि निविया शर्मा, ठंड पूरी तरह से दस्तक दे रही है और दे चुकी है इनफैक्ट किसी हद तक। सो अगेन, हम लोग जो है वो अपने आपको कोजी कोजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी कोई कोजी कोजी गाना प्ले कर दो। वेल ऑफ कोर्स हम भी वो करेंगे। तो चलिए, ये तो आज के टेम्परेचर की बात हुई, अब बात करते हैं एयर क्वालिटी की। तो एयर क्वालिटी है एकदम फेयर और नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे कि मैंने आपको कहा था। बीच में थोड़े बहुत बादल आपको दिख सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा कम, कहीं कहीं पर, किसी किसी जगह पर। उसके अलावा सब कुछ मुझे अच्छा नजर आ रहा है। रात को आप चांद को निहार सकते हो, सितारों को देख सकते हो, या यू कैन डू दैट ऑल। जी हाँ, और ये तो था फ्राइडे का हाल। अब जरा चलते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे को पूरी तरह से सनी रहने वाला है वेदर और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। वहीं अगर संडे की बात की जाए तो मोस्टली सनी रहेगा, बट बारिश होने के भी 50% चांसेस हैं विद 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मतलब कल तो पूरी तरह से सूरज निकलने वाला है। ऑल्दो वो सूरज निकलेगा, लेकिन ठंडक आपको फील होती रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख पाएंगे और रहेगा इससे थोड़ा कम ही। सो या यू नो दैट, यहां पर संडे को 50% चांसेस है। तो मैं कहूंगी कि बाहर जाने के जितने भी प्लान्स है वो आप सैटरडे को बना लें। ऑल्दो संडे के लिए बहुत ज्यादा बारिश प्रिडिक्ट नहीं की गई है, तो संडे को भी आप बाहर का प्लान बना सकते हैं। बट या ऐसे ही आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि मौसम के साथ ही रल मिलकर चलना होता है, मिलजुल कर चलना होता है। नहीं तो मौसम कहता है, अरे तुम्हारी क्या बिसात, तुम मेरे अगेंस्ट जाकर बाहर जाके प्लान बना रहे हो, आओ मैं तुम्हारे प्लान खराब करता हूँ। जी हाँ, सो बारिश हो जाती है। सो ऐसे में मौसम को जानिए, मौसम की जानकारी लीजिए और उसी के बाद ही पूरी की पूरी प्लानिंग कीजिए। यहाँ पर ये है मौसम का हाल, और अब जरा चलते हैं एक और खूबसूरत गाने की तरफ।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, और उससे मेरा मतलब है कि कैसे आप अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं। वैसे पार्ट तो आप ऑलरेडी हो, बट अपनी फरमाइशों के साथ पर्टिकुलरली ऑफिशियली इसका हिस्सा बन सकते हो। वो आपको कैसे करना है? वेल, आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, और वो नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, और आप किसी को गाना डेडिकेट कर हैप्पी और स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। सो या यू कैन डू दैट टू। आपको बस जल्दी से फोन उठाकर नंबर डायल कर अपनी फरमाइश या डेडिकेटेड सॉन्ग हम तक पहुंचाना है, एंड उसके बाद का काम अपनी आरजे निविया के कंधों पर छोड़ देना है, क्योंकि आपकी आरजे निविया के कंधों में दम है, वो इसका बोझ संभाल लेगी। डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
5: कभी उसे नूर नूर कहता हूं,

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ फ्राइडे का प्रोग्राम है, सो ऑफ कोर्स हम मजेदार बातें तो करने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं एक स्टोरी, एक फनी सी स्टोरी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और वो स्टोरी है द रॉक से रिलेटेड। एंड व्हेन आई से द रॉक, आपको तो पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। द रॉक ड्वेन जॉनसन, WWE के सुपरस्टार, अब पिक्चर्स यानी कि मूवीज के सुपरस्टार और इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया के भी सुपरस्टार, मतलब उनकी फॉलोइंग हर जगह बहुत ज्यादा है। फिर चाहे रेसलिंग वर्ल्ड से लोग हो, रेसलिंग वर्ल्ड के लोग उन्हें पसंद करते हैं, जो रेसलिंग को पसंद करते हैं वो उन्हें पसंद करते हैं, जो मूवीज देखते हैं वो उनको पसंद करते हैं, सब हर कोई उनको पसंद करता है। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अभी कुछ दिन पहले, और कुछ दिन पहले भी कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कुछ दो तीन दिन पहले की बात है, एक एक इंस्टाग्राम हैंडल में एक लेडी जो कि अगेन रिटेल में काम करती है, और मतलब कुछ आप इन्फ्लुएंसर तौर पर उन्हें देख सकते हैं, बट शी इज़ नॉट एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर, और वो बड़े ही अच्छे से लोगों को इंस्पायर कर रही थी, और वो मार्ट में घूम रही थी, शॉपिंग मार्ट में, और वो घूमते घूमते लोगों को अपनी वीडियो में दिखाती है कि देखिए दोस्तों, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज लुक एट दिस, द रॉक इज सेलिंग शैम्पू एंड कंडीशनर एंड ही इज बॉल्ड। जी हाँ, सो यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज इफ द रॉक कैन सेल शैम्पू एंड कंडीशनर, यू कैन ऑल्सो डू एनीथिंग। जी हाँ, गेस वॉट, ये इतना फनी वीडियो था कि ये वायरल तो हो ही रहा था, और ये वायरल होते होते ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक के पास पहुंच ही गया। अब द रॉक ने इसे देखा तो रॉक ने उस पर कॉमेंट भी किया और रिएक्ट भी किया, एंड द रिएक्शन वॉज रियली फनी। सो ऑफकोर्स उन्होंने बड़े ही अच्छे से एक तरफ वो लेडी की वीडियो लगाई, और साथ में दूसरी तरफ जो है वो लंबे से बालों के साथ वो नजर आए, और वो उनका कैरेक्टर है एक मूवी का जिसके तौर पर वो वहां पर नजर आया, और उसमें लिखा हुआ था, ओके दिस मेड मी बेल laugh hard, this made my belly laugh hard, और उसके बाद उन्होंने लिखा होता है, and hey, sometimes a demigod's radiant and ravishing hair needs shampoo and conditioner, you're welcome, love Moi, जी हाँ, PS I got a little gift coming your way, happy yellow cow, जी हाँ, ये वही लेडी है जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि don't give up on your dreams guys because the rock is selling shampoo and conditioner and he's bald, so यहाँ पर द रॉक के पास ये वीडियो पहुंच गई, उन्होंने रिएक्ट भी कर दिया, और उन्होंने उस लेडी के लिए एक गिफ्ट भी भिजवा दिया। आप इमेजिन करो, आप किसी सुपरस्टार के बारे में वीडियो बनाते हो और वो वीडियो सुपरस्टार के पास पहुंच जाती है, और फिर उसके बाद वो आपको गिफ्ट पहुंचाता है। लुक एट दैट, बट द थिंग इज कि इट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कि द रॉक जो कि लिटरली बॉल्ड है, उनके सर पे एक भी बाल नहीं है, वो शैम्पू और कंडीशनर के ब्रांड एम्बेसडर है। हाउ जी हाँ, सो आई अगेन दैट वुमन वॉज काइंड ऑफ राइट कि हमें अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करने की जरूरत है, हमें काम करने की जरूरत है, हार्ड वर्क और एकदम मछली की आंख पे निशाना लगाने की जरूरत है, हम कामयाब हो ही जाएंगे, फिर चाहे मतलब बन रहा है, लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम कामयाब हो जाएंगे। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा द रॉक की बात हो रही है, हम नॉर्मल लोग हैं। अरे द रॉक भी तो कभी नॉर्मल थे ना, हम भी बहुत बड़ा बन सकते हैं, जस्ट दैट कि हमें हिम्मत चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट sections पर। Don't miss it.
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: Are you ready to stop renting and thinking about...
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे लिसनर्स मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन मेरे लिसनर्स बाकी लोगों की बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मेरी एक बहुत ही प्यारी लिसनर है, उनसे मेरी बात हो रही थी एंड शी वॉज लाइक ओके निविया, आप मेरी जल्दी जल्दी फरमाइश प्ले कर देंगे तो मैं ना जाने वाली हूँ। एंड शी सेड कि मैं जाने वाली हूँ और मुझे सोना है। एंड आई वाज लाइक ओके, बट अभी आप मत जाओ ना। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, तुम कहती हो कि जल्दी सोना चाहिए। वेल ऑफ कोर्स शी इज नॉट फ्रॉम ब्रिस्बेन, शी इज फ्रॉम समवेयर एल्स, सो जो वहाँ के वक्त के हिसाब से काफ़ी देर हो गई है, रात हो गई है, और उनका सोने का टाइम जो है वो ऑलरेडी लेट है। तो मैं फिर भी उनको कह रही थी कि ओके ठीक है, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं, आप थोड़ी देर और रुकिए। तो उन्होंने कहा कि निविया शर्मा, आप ही तो कहती हैं और रेडियो ब्रिस्बेनी में कहा जाता है कि जल्दी बेड पे जाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए अगर आपको अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है। एंड आई वाज लाइक ओह रियली, मैंने ऐसा कुछ कहा है? जी हाँ, बट द थिंग इज कि अब मैं कहीं ना कहीं एक और एस्पेक्ट आपको इस चीज का बताने वाली हूँ। सो मेरी प्यारी प्यारी लिसनर्स, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक रिसर्च हुई है इंपीरियल कॉलेज लंदन में, जहाँ पे एनालाइज किया गया है डाटा फ्रॉम नियरली 27,000 पीपल, एंड उन्होंने देखा है कि हु गो टू बेड एंड वेक अप लेटर टेंडेड टू स्कोर हायर ऑन टेस्ट ऑफ मेमोरी, रीजनिंग एंड रिएक्शन टाइम। मतलब कि नाइट आउल्स जो हैं मे हैव हायर आई क्यूज देन अर्ली बर्ड्स, और ये रिसर्च के बेस पे मैं कह रही हूँ। जी हाँ, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। सो हाँ ठीक है, हेल्दी रहने के लिए अच्छी चीज है आप जल्दी सोते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट हो भी जाते हो हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका IQ भी तो बढ़ रहा है, राइट? जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा कितनी खराब हो तुम, है ना? मतलब कोई इंसान टाइम पर सोना चाहता था उसको बोल रहे हो लेट सो, मतलब जल्दी मत सो, क्यों? क्योंकि तुम चाहती हो कि प्रोग्राम को सुने। वेल ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए हम इतना प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो थोड़ी देर हो भी जाती है तो चलता है, प्लस आपको तो पता ही है IQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट यस्टरडे आई वॉज टेलिंग यू कि एक लड़की है जो कि 14 साल की है, जिसका IQ 162 दर्ज किया गया है, विच वॉज मोर देन आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग्स, जो कि अगेन मैक्सिको से है। सो अगेन, अगर आप लोगों को भी हायर IQ चाहिए तो थोड़ा देर से सोने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा गलत सलाह दे रही हो तुम, IQ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अब आप खुद ही देख लीजिए, आपको IQ चाहिए हेल्थ चाहिए, मैं आपको यहाँ छोड़ रही हूँ। आप IQ भी ले सकते हो, आप हेल्थ भी चूज कर सकते हो। अगर IQ चूज करते हो तो हमारा प्रोग्राम भी साथ में चूज हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच। ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना। अगेन, जो मेरी लिसनर है, प्यारी से लिसनर अमला जी, उन्होंने गाना भी फरमाइश किया है। सो फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है, और ये जो गाना है वो बहुत ही खूबसूरत है। गाने का नाम है लगन लगी। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए और थोड़ा देर तक जागने के लिए हमारे प्रोग्राम के लिए। हम जानते हैं कि आप कितना एफर्ट डालते हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना। और हाँ, मैं अभी भी कहूंगी कि IQ मिल सकता है देर से सोने में, सो डील बुरी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर ये गाना आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही दिलचस्प आपको लगने वाला है। इस दुनिया में बहुत सारे विचित्र लोग हैं और कुछ विचित्र फेस्टिवल्स भी हैं। सो नीदरलैंड का एक फेस्टिवल है जहाँ पर सारे के सारे रेड हेड पीपल पहुँचते हैं, मतलब वही लोग जिनके बालों का शेड थोड़ा ब्रॉन्जी है, थोड़ा रेडिश साइड है नेचुरली। ना ना ना, वो वाले नहीं जिन्होंने खुद करवा लिए अपने आप, नहीं, जो नेचुरल है उन्हीं को यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है और वही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जी हाँ, सो एवरी ईयर द स्मॉल टाउन ऑफ ब्रेडा इन द नीदरलैंड्स होस्ट व्हाट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ रेडहेड्स, द रेडहेड डे फेस्टिवल। जी हाँ, द रेडहेड डे फेस्टिवल, इट इज ऑफिशियली अ फेस्टिवल। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये शुरुआत कैसे हुई इसकी। सो बेसिकली ये हमेशा से यहाँ नहीं था, इसकी शुरुआत हुई 2005 में। जी हाँ, 2005 में एक पेंटर जिनका नाम था बार्ट रॉबिन होस्ट, उन्होंने लिटरली एक नोटिस जो है वो यहाँ पर लगाया, और नीदरलैंड की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर उनको कुछ 15 रेड हेड मॉडल्स जो हैं वो चाहिए थे, जिनके बाल जो है वो नेचुरली रेड और ब्रॉन्जी साइड पे हों। और वहाँ पर जब उन्होंने ये नोटिस लगाया और जिस दिन उन्हें वो पेंटिंग बनानी थी, उस दिन वहाँ पर 15 के बजाय 150 लोग पहुंच गए, 150 लड़कियां पहुंच गईं जिनके बाल नेचुरली उस कलर के थे। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो है, मैंने क्या सोचा था, उसके बाद जो पेंटिंग बनी वो और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो एक्सपेरिमेंट था और जो एक्सपीरियंस था बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल हो गया। कहां वो 15 लड़कियों के साथ वो पेंटिंग बनाने वाले थे, लेकिन वो 150 के साथ उन्होंने बनाई। और फिर क्या था, उसी के साथ, उसी इंसिडेंट के साथ वहां पर ये फेस्टिवल शुरू हुआ। जी हाँ, और यहाँ पर अब जब भी ये फेस्टिवल होता है तो 5,000 से ज्यादा लोग जो कि रेड हेड लोग होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। उस कलर के जो हेयर वाले जो लोग होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। बहुत कुछ होता है, फ्रेकल काउंटिंग कॉन्टेस्ट होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, फोटोग्राफी वर्कशॉप्स होती हैं, और परेड भी होती है सिटी सेंटर में। जी हाँ, सो अगेन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रेड हेड वो वाला जो शेड ऑफ हेयर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब अगर बात करें तो सिर्फ 1-2% ऑफ पीपल ही है इस पूरी दुनिया में जिनके नेचुरली उस कलर के हेयर हैं। जी हाँ, सो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो अजीब फील करते हैं, उनको एम्बैरेसिंग फील होता है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते उस कलर के हेयर के साथ। लेकिन यहां पर इस फेस्टिवल में उन्हें लगता है कि वो उस दिन स्टैंड आउट नहीं कर रहे, उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे बालों को वो फ्लॉन्ट करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि एटलीस्ट देयर इज अ वन डे व्हेन वी डोंट स्टैंड आउट एंड वी लव दैट। सो या आई मीन देयर आर थिंग्स दैट happens in the world जो कि बहुत ही ज्यादा interesting है। मतलब red head festival, oh what's that? जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा, I was like, what? Really? Yeah. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
12: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
13: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
12: Acha? वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, एक स्टूडेंट पूछता है अपने टीचर से, सर कैन आई बी पनिश्ड फॉर समथिंग आई डिडंट डू। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टूडेंट पूछता है अपने टीचर से, सर कैन आई बी पनिश्ड फॉर समथिंग आई डिडंट डू। तो टीचर कहता है, नो व्हाई? तो स्टूडेंट कहता है, आई डिडंट डू माय होमवर्क। या सो यू विल नॉट पनिश मी, राइट? जी हाँ। अब मैं ये सोच रही थी कि जिसने भी ये सोचा है बहुत खतरनाक सोचा है। भाई सीधी सी बात है, लॉजिक तो सही है कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो उसकी पनिशमेंट हमें क्यों मिलेगी। तो सीधी सी बात है, हमने होमवर्क नहीं किया तो इसकी पनिशमेंट भी हमें नहीं मिलनी चाहिए, राइट? इट्स जस्ट दैट कि वहां पे लॉजिक थोड़ा ऑपोजिट पे काम करता है, बट इसने तो अपना दिमाग चला दिया, होमवर्क नहीं किया लेकिन दिमाग पूरा चलाया है ये पूरी की पूरी ट्रिक सोचने में कि सर आई कैन आई बी पनिश्ड फॉर समथिंग आई डिडंट डू। और जब टीचर कहेगा नो व्हाई, तो आप सीधा सीधा कह दोगे आई डिडंट डू माई होमवर्क, सो टेक्निकली यू कांट पनिश मी, राइट? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, न्यूज वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है वॉर फ्रंट पे। जी हाँ, वॉर तो हमें नहीं लग रहा रुकने की कगार पर पहुंचेगी, क्योंकि जैसे ही एस्केलेट होता जा रहा है, मतलब वहां पर हमले जारी है और यहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स बोल रहे हैं अरे हम तो बस इसको सुलझाने वाले हैं, इस विवाद को नहीं सुलझ रहा आप लोगों से सर, यही सही बात है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लिखा खुला खत, बातचीत में क्या कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में खुद और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच आमने सामने की मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। यूक्रेनी नेता ने लिखा कि जब तक कि यूरोप में चल रहा युद्ध एक बार फिर अमेरिका के ध्यान का केंद्र ना बन जाए, सिर्फ इंतजार करना गलत होगा। उन्होंने आगे कहा कि शांति केवल यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बातचीत के जरिए ही आ सकती है। उन्होंने प्रस्तावित बातचीत तक के लिए पूरी तरह से युद्ध विराम की भी अपील की है, जिसे पुतिन ने गुरुवार को पहले ही खारिज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें लगता है कि अगर दोनों नेता मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। क्रेमलिन ने पुष्टि की कि उसे खत मिल गया है और पुतिन को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। खत का लहजा चुनौती भरा, यहां तक कि मजाकिया भी था, जिसमें रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन के हालिया हमलों की ओर ध्यान दिलाया गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सत्ता में 26 साल बिताने के बाद पुतिन की बढ़ती उम्र अब अपना असर दिखाने लगी है। खत में एक निमंत्रण भी दिया गया था। ज़ेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन हमारे और आपके बीच सीधी बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करने का प्रस्ताव रखता है, मैं इसके लिए एक मुलाकात का प्रस्ताव रख रहा हूँ। वेल, मुलाकात का प्रस्ताव तो ज़ेलेंस्की जरूर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में वो दूसरे फ्रंट पर कहीं ना कहीं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं। जी हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले हमला किया है उसी जगह पर जो कि पुतिन के रेजिडेंस वाली जो सिटी है उस पर, रेजिडेंशियल एरिया के पास हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से, बहुत ही बड़ा। अब ऐसे में रेज बेट किया जा रहा है, लेकिन जब सामने से हमला हो रहा है तो ये वाली बात की जा रही है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि रशिया इज गुड, यूक्रेन इज बैड। ऑफ कोर्स रशिया इज नॉट गुड, रशिया ने हमला किया था जो कि सच में बहुत ही गलत बात है, लेकिन उसके बाद यूक्रेन को भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसी चीजें सिखाई, ऐसी चीजें बताई कि वो विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। 4 साल होने वाले हैं इस युद्ध को, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अगर आप सच में शांति चाहते हो तो पहले वैसी हरकत मत करो जो आपने अभी की। मतलब आप और जगह हमले करते तो फिर भी बनता था, लेकिन अगर आप पुतिन के साथ कोई भी समझौता चाहते हो तो पुतिन के रेजिडेंशियल वाले एरिया को मत टारगेट करो, क्योंकि ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा कि ये सच में बहुत ही बड़ी गलती है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मिस्टर ट्रंप की तरफ। जी हाँ, प्रेसिडेंट बोलने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा मिस्टर ट्रंप ठीक रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जैसी हरकतें नहीं है इनकी। सो सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर रोस्टिंग सेशन में भी जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है कुछ। सो सबसे पहले काम की बात, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद, ट्रंप, या ये ट्रंप ने कहा है, क्यों कहा है आइए जरा बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाएगा। ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी बहुत पसंद है। माय गॉड, इतने पसंद है तो तुम क्यों उस कंट्री के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर रहे हो भाई। जी हाँ, सो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हालांकि एक बार ट्रंप ने फिर दोहराया कि भारत ने अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और उसके बदले अमेरिका को कुछ नहीं मिला। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया, उन्होंने हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है, हम भारत से काफी पैसा कमा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत लंबे समय से जारी है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा हुई ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत को कोई डील करनी ही नहीं चाहिए। छोड़ो, मतलब सस्ता महंगा छोड़ो, टैरिफ छोड़ो, करो ही मत। मतलब दिस कंट्री जो है, आई मीन कंट्री के लोग तो अच्छे हैं, पर एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप के रहते रहते कोई डील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज या दिस मैन इज क्रेजी, दैट्स ऑल आई कैन से। यहां पर रोस्टिंग सेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे एक और बढ़िया सा गाना।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
9: तूने ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
8: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
9: बिल्कुल, ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमसॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
10: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों वही मौसम चाइना में बहुत ही खतरनाक तरीके से बदला। जी हाँ, चाइना में बहुत बड़ा तूफान आया था और वो तूफान कोई नॉर्मल तूफान नहीं था, बल्कि उसने लोगों को, उनके व्हीकल्स को उड़ा दिया एक जगह से दूसरी जगह पे। जी हाँ, मतलब हेल, स्टॉर्म, बारिश, सब कुछ जो है वो देखने को मिला। और आपको मैं बता दूं कि चाइना का जो जी हाँ, जो चाइना के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न चाइना की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर हुआ मतलब बहुत ज्यादा तूफान, बहुत ज्यादा बारिश और ये सब देखने को मिला। और वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि कैसे टाइम से पहले जो है वो मॉनसून और बारिशों ने दस्तक दे दी है, वो भी उन जगहों पर जहां से चाइना अपना खाना प्रोड्यूस करता है, मोस्टली उन प्रोविंस से। नाउ ऑफकोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट सुपर एल नीनो, क्योंकि सुपर एल नीनो की वजह से ही ये हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे पैसिफिक में जो हुआ है, यानी कि पैसिफिक के नीचे जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर बहुत भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, बहुत भीषण बारिश देखने को मिल रही है, तूफान ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, और अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना में जो विनाशकारी चक्रवात तूफान आया था उसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जी हाँ, मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते, मतलब अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा होती है। 240 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है वो तूफान चल रहा था, लोगों की बालकनीज जो हैं उनके बुरे हाल हो गए, लोगों के व्हीकल्स के बुरे हाल हो गए, गाड़ियां उड़ गई, यू नो मोटर बाइक्स उड़ गई, लोग उड़ गए। जी हाँ, कुछ वीडियोज में तो लोगों को भी उड़ते हुए देखा गया है। आप लोग बोलोगे कि ये वैसा ही तूफान लग रहा है जैसे थोड़े दिन पहले इंडिया में यूपी में आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो चाइना वाला तूफान था वो यूपी वाले से ज्यादा खतरनाक था। सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि कितना बुरा हाल यहां पर हुआ है लोगों का। नुकसान की बात डिफरेंट है, लेकिन अगेन जान माल की भी हानि हुई है ऐसा कहा जा रहा है। वेल अगेन, चाइना कभी भी इसके बारे में खुद से रिपोर्ट नहीं करेगा, सो ऑफकोर्स जो रियल डाटा है वो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो तूफान वहां पर आया था वो बहुत ही ज्यादा भीषण और भयानक था। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ ट्रंप के रोस्टिंग सेशन में आपका स्वागत है, क्योंकि वी आर गना रोस्ट हिम। ऑल्दो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इंसान हमें इतना कंटेंट देता है कि हमें कंटेंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अभी एक नई चीज सामने आई है जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वो ये है कि ट्रंप जो है वो एक मीटिंग के दौरान ही सो गए। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सोते हुए नजर आए, अपनी आंखों को बंद करके डॉज ऑफ होते हुए नजर आए ओवल ऑफिस के एक इवेंट में। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी कुछ दिन पहले उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे थे, मार्को रूबियो कह रहे थे कि नहीं, वो बंदा कभी सोता ही नहीं है, वो कभी मुझे 12:30 कॉल करते हैं रात को, कभी वो मुझे सुबह 1 बजे कॉल करते हैं, कभी वो मुझे 5 बजे कॉल कर देते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो इंसान कभी सोता ही नहीं है, इनफैक्ट मैं सोता हूँ, और उनकी वर्क हैबिट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो कभी भी नहीं सोते। अब मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सामने सामने ही सो गए। मतलब वहां पे प्रेस है, पूरे के पूरे जो है वो मीडिया आउटलेट्स जो है वो वहां पर बैठे हुए, बड़े बड़े जो है लोग वहां पर मौजूद हैं, और वहीं पर बातें करते करते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम थोड़ा सा झपकी ले लेता हूँ। नाउ यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि झपकी तो किसी को भी आ सकती है, राइट। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही फनी तरीके से सो रहे थे, और जिस चीज के दौरान वो सो रहे थे वो बहुत ज्यादा फनी है। ठीक है यार, मतलब इंसान रात को नहीं सोता है तो दिन में कभी ना कभी तो सोएगा, फिर चाहे मीटिंग हो, फिर चाहे कोई बहुत बड़ा डिनर हो, फिर चाहे कुछ और हो, मतलब थोड़ा बहुत तो सो सकता है इंसान, मतलब इतनी तो माफी चलेगी। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुम हिल गई हो क्या, कैसे माफी मिलेगी। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर सब कुछ एक इवेंट चल रहा है, उसमें भी इन बंदा झपकी ले रहा है। वेल, ट्रंप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए एक और चीज बता दो जो कि बहुत ही फनी है, जिसको सुन के तो मेरे पैरों से जमीन घिसक गई। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब इंसान ने अपनी तारीफ करनी इतनी ज्यादा हद तक शुरू कर दी है कि आप तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। वेल, कहा जाता है कि अगर आप झूठ जो है वो 100 बार बोलो तो सच लगना शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं पता वो दुनिया को सच लग रहा है या नहीं, लेकिन उनको तो सच लग रहा है। सो ट्रंप ने अपने आप को रेफर किया है, क्या मैं आपको जरा कोट करने वाली हूँ। ट्रंप रेफर्स टू हिमसेल्फ

as one of the finest intellects in the history of United States of America. आप लोग बोलोगे क्या? निवेश शर्मा, what are you talking about? So US President Donald Trump ने describe किया है अपने आप को one of the finest intellects in the history of कंट्री. और ये उन्होंने कब किया? ऑफ कोर्स इन हिज ड्यूरिंग हिज रीसेंट अपेयरेंस ऑन द न्यूयॉर्क पोस्ट पोड फोर्स वन. जी हाँ, उस दौरान उन्होंने ये किया. उन्होंने कहा कि जो बाइडेन तो बिल्कुल जो करता था सब खराब करता था. वो कहते हैं ओबामा ने जो किया सब गड़बड़ किया, सब ने सब कुछ गड़बड़ किया है. अरे उनका बस नहीं चलता, नहीं तो वो अब्राहम लिंकन को भी बोलते हैं, अरे वो इंसान भी गलत कर रहा था, आपको क्या पता, पीछे से कुछ और कर रहा था, आगे से कुछ और कर रहा था. जी हाँ, सो ऐसे में एक ऐसा प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिल गया है जो खुद को कह रहा है कि ही इज द फाइनेस्ट इंटेलेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट जो मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स जो हैं वो चले गए हैं स्वर्ग में, हेवन में, जहाँ भी हैं, वी डोंट नो, वो भी सोच रहे होंगे क्या बोलता है ये इंसान, क्या बोलता है, मतलब क्या बोलता है, कोई इसको चुप क्यों नहीं करवाता. वेल आई डोंट नो, उनको कोई चुप क्यों नहीं करवाता, बट द थिंग इज कि वो ऐसा कह सकते हैं, वो कहीं भी सो सकते हैं और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ही इज मिस्टर ट्रम्प एंड ही इज डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा कहाँ की तरफ। ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें फ्राइडे को करनी होती है, और वो क्या है? वेल, वो ऑफ कोर्स हमारा मूवीज, कौन कौन सी हुई है रिलीज उसके बारे में आपको बताना है। ऑफ कोर्स फ्राइडे है, तो फ्राइडे अपने साथ लेकर आता है रिलीजेस, बॉलीवुड रिलीजेस, हॉलीवुड रिलीजेस। तो आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं जो मूवी इस हफ्ते रिलीज हो गई है, और वो है जवानी तो इश्क होना है। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, ये तो गाना है, वो भी बहुत पुरानी मूवी का, क्या कह रही हो तुम? वेल, ये नई मूवी है जिसका टाइटल है ये, और अगेन इसे वही इंसान ने बनाया जिसने पहले वाली को बनाया था, और इसमें वरुण धवन है और साथ में है उनके मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े। अब आपको देखनी है या नहीं देखनी है वो आप खुद डिसाइड कीजिए, बट या इट्स अ कॉमेडी रोमांटिक मूवी, यानी कि रोम कॉम, गुड मूवी। इतनी अच्छी मूवी, कितनी अच्छी मूवी, वो आप डिसाइड करोगे। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा चलते हैं सीधा एक और मूवी की तरफ जो कि रिलीज हो गई थी पिछले से पिछले हफ्ते, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चांद मेरा दिल। चांद मेरा दिल जो है अभी वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो मैंने अभी आपको मूवी के बारे में बताया, बिकॉज द पहली मूवी मैंने आपको बताई वो है रोम कॉम, लेकिन चांद मेरा दिल है रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा, मतलब आंसू, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव वाला प्यार, पैशनेट वाला प्यार, लेकिन वो प्यार पूरा नहीं हो पा रहा है, इंसान गड़बड़ है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग ऐसे जॉनर के फैन हो तो आप देख सकते हो इसको। जी हाँ, इसी के साथ आप देख सकते हो पति पत्नी और वो दो, जो कि अगेन पिछले से पिछले से पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, और ये मूवी में आयुष्मान खुराना है और साथ में उनके हैं तीन नायिकाएं। जी हाँ, तीन नायिका हैं उनके साथ, वामिका गाबी, राकुल प्रीत एंड सारा अली खान। मतलब एक है बीवी और बाकी दो कौन है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे देखोगे। इसी के साथ भूत बंगला के अभी भी कुछ शोज लगे हैं लेकिन अब वो ऑलमोस्ट उतर गई है, सो अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इट्स अ हॉरर कॉमेडी, कैन वॉच इट। एंड पति पत्नी और वो दो जो मैंने आपको बताई, दैट इज ऑल्सो अ रोम कॉम, मतलब रोमांटिक कॉमेडी। जी हाँ, इसी के साथ ये है कुछ मूवीज जो कि आप देख सकते हैं। अब जरा बात करते हैं कृष्णा अवतारम के बारे में, एक ऐसी मूवी जो कि लिटरली आपको कृष्ण भगवान की लीलाओं की दुनिया में ले जाएगी, लेकिन पर्सपेक्टिव है सत्यभामा उनकी दूसरी रानी का। जी हाँ, और ये भी आप देख सकते हो। इसी के साथ आप देख सकते हो पेडी। जी हाँ, अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम पेडी है पेडी है, लेकिन ये एक साउथ की मूवी है, बट एग्जैक्टली साउथ की नहीं है क्योंकि ये पैन इंडिया मूवी है। इसमें है रामचरण तेजा और साथ में है उनके जानवी कपूर। जी हाँ, रामचरण और साथ में है जानवी कपूर। आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी वो आपको देखना है, लेकिन ये है एक्शन ड्रामा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवी। जी हाँ, सो ये है कुछ बॉलीवुड मूवीज और साथ में इंडियन मूवीज बेसिकली। इसी के साथ जो मूवी आप देख सकते हैं वो है ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, ये है एक्शन, ये है एडवेंचर, ये है फैंटेसी एंड ये है साईफाई। गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आपको ये नहीं देखना है और आपको अपने किड्स को लेकर जाना है मूवी दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ द जंगल। जी हाँ, इट्स अ एनिमेटेड मूवी एंड यू आर गना लव इट, सो डेफिनेटली दिस कैन बी योर चॉइस। एंड इसी के साथ यही सब है आपके लिए इस हफ्ते, देखिए और फिर मुझे बताइए आपने कौन सी मूवी देखी, कौन सी मूवी देखने का डिसाइड किया, प्लान बनाया, जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमारी तरफ से एक और गाना आप सब के लिए।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अब आपको पता ही है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। क्या आपको नहीं पता? वेल, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, विच इज ओल्ड इज गोल्ड। वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, और उसका मतलब यही है कि पुराने गाने, पुराने किस्से, पुरानी बातें, सब कुछ होगा यहाँ पर, और होगी आपकी फरमाइशें जो कि पुराने गानों से रिलेटेड होंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपने पुराने गानों वाली फरमाइशें भेज दीजिए। और यहाँ पर जो पहला गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ इस खूबसूरत से सेगमेंट का, वो है बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। ना, मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे गाने के लिए मना किया गया है। कभी कभी मैं निकल जाती हूँ ऐसे, थोड़ा भावनाओं में बह जाती हूँ, पर फिर मुझे याद आ जाता है कि मेरे लिसनर्स ने कहा था कि निव्या तुम अच्छा नहीं गाती तो तुम मत गाया करो। आई मीन, कैन यू इमेजिन, मैं इस पूरी दुनिया में इकलौती रेडियो जॉकी होंगी, इकलौती प्रेजेंटर होंगी जिसको उसके लिसनर्स ने कह दिया, अरे निव्या बाकी सब ठीक है पर तुम गाया मत करो। एंड यू नो व्हाट, जब ये पहली बार मैंने सुना था, आई वाज लाइक व्हाट, लाइक मैं इतना बुरा तो नहीं गाती। जी हाँ, बताते हैं इसकी मुझे बुरा नहीं लगा था, बल्कि मुझे बहुत हंसी आई थी। सो या, आप लोगों की जो हुक्म है वो सर आंखों पर, गाऊंगी नहीं लेकिन यहाँ पर सुनाऊंगी जरूर आपको बढ़िया सा गाना, और ये है वो गाना।

जी हाँ दोस्तों तो इसी के साथ मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से मेरे हमदम मेरे दोस्त किस किस में देखी है। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जिसमें बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री आपको देखने को मिलती है एंड साथ में आपको मिलते हैं ही मैन ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, तो ये किस्सा जो है वो खुद शर्मिला टैगोर जी ने ही सुनाया है, क्योंकि शर्मिला टैगोर इसमें काम कर रही थी और उन्होंने काम किया है इसमें। वो एक्ट्रेस रही हैं धर्मेंद्र के ऑपोजिट। जी हाँ, वो एक प्रोग्राम में बताती हैं कि कैसे इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए टाइम पे वो डबल शिफ्ट कर रही थी, और डबल शिफ्ट करने के बावजूद उसका एक गाना जिसका नाम था छलका ये जाम। जी हाँ, छलका ये जाम शायद आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा अगर आपने ये मूवी देखी है। और इनकेस अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है तो भी आपने कहीं ना कहीं इस गाने के बारे में कुछ तो सुना होगा ही। शर्मिला जी बताती हैं कि कैसे उनको उसी ही दिन गाने को ख़त्म करना था, क्योंकि वो जाना चाहती थी कोलकाता। अब जो लोग जानते हैं शर्मिला टैगोर जी की कहानी को, उनको पता होगा कि कितनी रोमांटिक कहानी रही है उनकी और टाइगर पटौदी जी की। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कहानी। मतलब लिटरली टाइगर पटौदी ने उनको वू करने के लिए फ्रिज भिजवाया था उस वक्त। आई मीन फ्रिज होते भी नहीं थे लोगों के पास उस वक्त, लेकिन उनको वू करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बहुत लंबी कोर्टशिप ये चली थी। चलिए, ये सब हो जाता है। अब ये छलका ये ड्राम की शूटिंग जो है वो चल रही थी, क्योंकि एक गाना जो है, ये लास्ट सॉन्ग जो है वो बचा था। पूरी की पूरी पिक्चर की शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये गाना कंप्लीट होने में आ ही नहीं रहा था। शर्मिला जी कहती हैं, मुझे अगले दिन जाना था कोलकाता, क्योंकि वहां पर वेस्ट इंडीज और इंडिया का क्रिकेट मैच था। जी हाँ, अब आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टाइगर पटौदी, जो कि शर्मिला टैगोर जी के हस्बैंड रहे हैं, वो बहुत ही बड़े क्रिकेटर रहे हैं। वो इंडियन क्रिकेटर थे और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर जो हैं वो रहे हैं। शर्मिला जी बताती हैं कि मैं जाना चाहती थी अगले दिन कोलकाता और टाइगर जो हैं वो खेलने वाले थे, बट यहाँ पर शूटिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी, डबल शिफ्ट में भी नहीं हुई, तो मैंने धर्म जी से रिक्वेस्ट किया कि धर्म जी प्लीज़ ये गाना हम आज ही मैं ख़त्म कर देते हैं या रात में ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कल मुझे निकलना है कोलकाता के लिए और मैं इसको बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकती हूँ। शर्मिला जी कहती हैं कि जब धर्मेंद्र ने उनसे ये सुना तो धर्मेंद्र जी वो सो नाइस, ही वॉज लाइक ही ओके वी विल डू इट। जी हाँ, सुबह 5 बजे तक उन्होंने उस गाने की शूटिंग कंप्लीट की। जी हाँ, 5 बज गए लेकिन उन्होंने उस गाने को कंप्लीट किया। धर्म जी ने भी ये बात मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि शर्मिला जी जाना चाहती हैं कोलकाता और वहाँ पर वो चेयर करना चाहती हैं अपने हस्बैंड को। तो बस फिर क्या था, शर्मिला जी बताती हैं कि कैसे धर्म जी वो सो नाइस कि आप उनसे कुछ भी कहते थे करने के लिए, अगर आप कोई भी बात उनसे कहोगे कि अगर ये हो जाए तो अच्छा है, तो धर्म जी वो पूरा किया करते थे। या एंड वी नो दैट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, अगेन अगर इस गाने के बारे में बात हुई है छलका ये जाम, तो ये तो आपको सुनाना पड़ेगा, रफी साहब की आवाज में है ये।

जी हाँ दोस्तों, अब अगला किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो किस्सा सुनाया है नीतू जी ने खुद। ऑफ कोर्स अब नीतू जी किस्सा सुना रही हैं तो ऋषि जी के बारे में ही होगा, क्योंकि ऋषि जी वो सच अ टॉपिक, मतलब ही स्टिल इज अ टॉपिक, मतलब उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनके ट्वीट सब कुछ बहुत ही फनी रहा है, एकदम बिंदास रहा है। नीतू जी बताती है कार्यक्रम के दौरान कि कैसे एक सॉन्ग की शूटिंग हमारी चल रही थी और वो सॉन्ग जो है वो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जो कि मैं आपको सुनाने में वाली हूँ, और गाने का नाम है पर्दा है पर्दा। जी हाँ, पर्दा है पर्दा, और ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों ही उस मूवी में है। अमर अकबर एंथनी का ये गाना है। जी हाँ, नीतू जी कहती हैं कि ये गाने की शूटिंग के दौरान हमारी शूटिंग तो चल रही थी, हम एकदम रोमांस में नजर आ रहे थे अगर आप शूटिंग देखेंगे, अगर आप गाने को देखेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। उस वक्त हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मतलब मैं और ऋषि रिलेशनशिप में थे, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन 2-3 दिन से हमारी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी और उस वक्त फोन हुआ नहीं करते थे, और लाइन जो थी फोन्स की, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लेकिन जो फोन की जो लाइन्स थी उनमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए फोन भी वो नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर शूटिंग होती थी लेकिन वैसे उनसे बात हो नहीं पाती थी, इस वजह से झगड़ा जो है वो चल रहा था और ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन जो है वो हो गई थी। अब वो कहती हैं कि झगड़े की वजह हमेशा बहुत ही ज्यादा फनी हुआ करती थी, हमेशा एक ही वजह होती थी कि तूने मुझे फोन नहीं किया, अरे तू मुझे फोन नहीं करती है, तुम मुझे फोन नहीं करते हो, तुमने फोन कैसे नहीं किया। तो नीतू सिंह कहती है कि जब मैं सामने से बोलती थी कि आई वॉज इन द शॉट, तो फिर सामने से ऋषि जी कहते थे कि अच्छा अब शॉट हमसे ज्यादा प्यारा हो गया, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारा फिल्म है, एक्टिंग तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारी है। एंड जब फिर वो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते थे फिर से लड़ाई हो जाती थी। तो नीतू सिंह बताती है कि शादी से पहले वो एक दूसरे से बहुत लड़ा करते थे, ऑल्दो शादी के बाद भी वो एक दूसरे से बहुत लड़ाई करते थे, बट उससे पहले वो इतनी फनी फनी चीजों पर लड़ाई किया करते थे। ये सुन के हमें ऐसा लगेगा जो यंग कपल्स हैं, जो जेंजी कपल्स हैं, अरे पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था, हम अलग नहीं है, हम अजूबे नहीं है। जी हाँ, सो नीतू सिंह कहती है कि यहाँ पर एक वक्त ऐसा आता है इस गाने में जब मुझे उनके लिए फूल लेकर जाने हैं, जब फूल लेकर जाती हो तो ऋषि सामने से देख के कहते हैं कि मुझे ऐसा दिल कर रहा था कि ये फूल लेके इसके सर पे मार दूं मैं। जी हाँ, मतलब क्योंकि वहां पे शूटिंग में तो उनको रोमांस दिखाना है पर असल में रोमांस का तो लेना देना ही नहीं है, वहां तो बल्कि और खतरनाक World War III शुरू होने की कगार पे थी। फिर क्या है, नीतू सिंह कहती है कि यही सब चलता था और ये एक बार ही नहीं हुआ है, काफी टाइम हुआ है, जब भी हमने कोई मूवी शूट की है लड़ाई झगड़े तो हमारे होते रहे हैं, लेकिन फिर भी लव प्रिवेल्स एवरीथिंग, और शादी की बच्चे हुए दो प्यारे प्यारे, ऑल्दो बाद में भी वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एंड यू नो व्हाट, जब भी नीतू सिंह और ऋषि कपूर एक दूसरे के साथ में आते थे किसी इवेंट में या किसी प्रोग्राम में तो दिखता था कि कितनी नोकझोंक जो है वो उन दोनों में रहती है, बट अगेन आई थिंक नोकझोंक भी सिर्फ प्यार में ही होती है। यहाँ पर एक गाना जो कि मैं आपको अभी बताया, पर्दा है पर्दा, और इसी के पीछे का किस्सा है ये। सो अब गाना भी आपको सुना देते हैं।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

जी दोस्तों, तो गाना आपने सुन लिया, किस्सा भी हमने आपको सुना दिया और अब बारी है आपसे विदा लेने की। जी हाँ, इजाजत दीजिए, घड़ी ने कर दिया है इशारा। आई होप मैंने आपको अच्छे से एंटरटेन किया हो, आई होप मैंने आपको मजेदार बातें बताई हो, आई होप मैंने आपको स्ट्रेस मुक्त किया हो। आप लोग बोलोगे कि नहीं वे शर्मा ना ना ना, ये तुम कैसे करोगी, क्योंकि स्ट्रेस तो था ही नहीं आज। आज तो फ्राइडे है, सो नो स्ट्रेस डे है, फ्राइडे इज नो स्ट्रेस डे, बात में दम है। सो इसी के साथ मजे लीजिए इस खूबसूरत से मौसम की, आई मीन थोड़े ठंडे ठंडे खूबसूरत मौसम की, एंड खाना खाइए यमी सा, गाना गाइए अगर आप अच्छा गा सकते हो। अगर निविया की तरह गाते हो, मेरी तरह गाते हो, फिर मत गाइएगा। जी हाँ, फिर मत गाइएगा। बाकी इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। मिलना होगा अब आपसे कल, यानी कि टॉप 10 हॉट 10 में और फिर इवनिंग वाइब में मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में से है, और इसका नाम है महबूब मेरे, महबूब मेरे, नहीं पूर्ण वो नया वाला नहीं, महबूब मेरे वो वाला। जी हाँ, बाय, सी यू, टाटा।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर, QBOG का संडे 31st

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन मैराथन फेस्टिवल आज से शुरू। आज रुक करते हैं ब्रिस्बेन की मैराथन का। ब्रिस्बेन मैराथन फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, जो इस साल अपना 34वां साल मना रहा है। इस मौके पर ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल की तरफ से स्टोरी ब्रिज और किंग जॉर्ज स्क्वायर जैसी मशहूर इमारतों और मूर्तियों को आज रात ब्लू कलर की लाइटों से रोशन किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन पोर्ट पर जहाजों के टकराने की रिपोर्ट आई सामने। ब्रिस्बेन पोर्ट से जुड़ी एक बड़ी सरकारी रिपोर्ट आज जारी की गई है। पिछले दिनों आए भयानक तूफान के दौरान 3 बड़े कंटेनर जहाज अपने एंकर टूटने की वजह से बह गए थे और एक जहाज जमीन में धस गया था। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो की इस रिपोर्ट में बताया गया कि तूफान इतना अचानक और तेज था कि जहाजों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वहीं पैसिफिक देशों की पुलिस को ब्रिस्बेन में दी जा रही है ट्रेनिंग। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट के पास बने एक कॉम्प्लेक्स में पैसिफिक आइलैंड्स के 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं ब्रिस्बेन की सड़कों पर भारी ट्रैफिक और सुधार का काम। ब्रिस्बेन के लोकल ड्राइवर्स के लिए जरूरी अपडेट। पोर्ट इलाके और मुख्य हाईवे पर हाल ही में हुए हादसों और रोड रिपेयर के काम की वजह से आज सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। वहीं ब्रिस्बेन मैराथन के रूट पर कई सड़कें रहेंगी बंद। अगर आप वीकेंड पर ब्रिस्बेन सिटी के आसपास घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रूट देखकर ही निकलें। मैराथन फेस्टिवल में 35 देशों के हजारों रनर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके चलते हाफ मैराथन 10 किलोमीटर और बच्चों की मिनी मैराथन के लिए शहर के कई मुख्य रास्तों को आज और वीकेंड पर गाड़ियों के लिए बंद रखा जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन में विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की धूम। जून का महीना शुरू होते ही ब्रिस्बेन में विंटर स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ गया है। स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां नजदीक होने की वजह से काउंसिल ने पार्कों और ग्राउंड्स में कई तरह के आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले केरल में मॉनसून की एंट्री। पहली बड़ी खबर मौसम से। मौसम विभाग यानी कि IMD ने कंफर्म कर दिया है कि साउथ वेस्ट मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। हालांकि इस बार ये अपने तय समय से 3-4 दिन की देरी से आया है। वहीं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर गृह मंत्री का संदेश। भारत के गृह मंत्री ने इस मौके पर देश को बधाई देते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड पावर के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वहीं LPG सिलेंडर के नए दाम। किचन में के बजट से जुड़ी खबर। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में करीब 42 से 53 रुपए की बढ़ोतरी की है। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक में भारतीय इकोनॉमिस्ट की बड़ी नियुक्ति। भारत के लिए गर्व की बात। केंद्र सरकार ने नीलकंठ मिश्रा को वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वहीं मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट। अगर आप मुंबई में हैं या मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि BMC ने चेतावनी जारी की है कि इस मॉनसून सीजन यानी जून से सितंबर के बीच मुंबई के समंदर में 24 बार हाई टाइड उठेंगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले पुतिन का भारत को लेकर बड़ा बयान। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले बात रूस की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने दोहराया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर रूस के साथ रिश्ते कम करने का जो दबाव बनाया जा रहा है वो पूरी तरह बेकार है। वहीं लेबनान और इसराइल में सीज फायर के बाद फिर तनाव। मिडल ईस्ट से एक परेशान करने वाली खबर है। इसराइल और लेबनान के बीच कल ही सीज फायर को आगे बढ़ाने और पायलट जोन बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन आज फिर दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले होने की खबर आई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन को सीधी अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक पब्लिक लेटर जारी करके रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सीधी बातचीत करने की अपील की है।
इसी के साथ अमेरिका और रूस मिलकर बनाएंगे समंदर के नीचे टनल। एक बेहद हैरान करने वाली और बड़ी खबर, रूस और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है। रूसी दूतावास ने बताया कि दोनों देश आज बेरिंग स्ट्रेट के नीचे एक टनल यानी सुरंग बनाने के डिजाइन पर साइन करने वाले हैं। वहीं एशिया में फसलों पर सूखे का खतरा, ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिख रहा है। एशिया के कई देशों में इस समय बेहद सूखे मौसम और अल नीनो के खतरे की वजह से फसलों की बुवाई रुक गई है। वहीं साउथ कोरिया चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की बड़ी जीत। साउथ कोरिया में राजनीतिक खबर, वहां हुए लोकल और पार्लियामेंट बाय इलेक्शंस में वहां की रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक तरफा और बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए सिएटल का स्पेस नीडल बना फुटबॉल। स्पोर्ट्स की शुरुआत करते हैं। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ से फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके वेलकम के लिए अमेरिका के सिएटल शहर की सबसे मशहूर बिल्डिंग स्पेस नीडल की छत को पूरी तरह से एक विशाल फुटबॉल के रूप में पेंट कर दिया गया। वहीं लियोनेल मेसी की आखिरी जंग का काउंटडाउन। फुटबॉल फैंस के लिए एक और बड़ी खबर, 39 साल का 26 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके वेलकम के लिए अमेरिका के सिएटल शहर की सबसे मशहूर बिल्डिंग स्पेस नीडल की छत को पूरी तरह से एक विशाल फुटबॉल के रूप में पेंट कर दिया गया। वहीं लियोनेल मेसी की आखिरी जंग का काउंटडाउन। फुटबॉल फैंस के लिए एक और बड़ी खबर, 39 साल के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी

0: अब बात एथलेटिक्स की। रोम डायमंड लीग ने श्रीलंका के रमेश पाथीरागे ने जेवलिन थ्रो में कमाल कर दिया है। उन्होंने 92.62 मीटर दूर भाला फेंक कर नया मीट रिकॉर्ड और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वहीं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में कार्लसन और गुकेश की मुश्किल रह, चेस के मैदान से खबर। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के आखिरी दिन भारत के डी गुकेश और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन दोनों ही इस समय आखिरी पायदान से बचने की रेस में जूझ रहे हैं। इसी के साथ भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच की तैयारी। क्रिकेट की बात करें तो भारत के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: लीजिए परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिस्बेन के सतबीर सिंह के पिता जनरल सिंह के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून को 11 बजे से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलन पार्क में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
6: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
6: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, The Grand Multicultural Mela Carnival 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमक

0: का एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizvani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Brizvani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Brizvani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Brizvani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan,
13: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर
0: मान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स

0: Then government Brisbane.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
2: Yeah, Rahul, tere case ka kya hua?
3: Yeah, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तुसी बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहीदे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां दा करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इहनां गल्लां नूं लगाउणा असीं पंजाबी गीतां दा तड़का। तां तुसीं की करना, तुसीं कुछ नहीं करना, बस तुसीं अपना फोन चकना ते तुसीं साडे नाल जुड़ना शुरू कर देना। तां किवें जुड़ना है तुहानूं पता हैगा ना। रेडियो ब्रिसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रिसवानी@brisbane.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया थोड़ी मर्जी है, पर जुड़ना तो देखो मैं यही कहूंगी कि कंपलसरी है। तो बड़बड़ दे नाल जुड़ना शुरू करो। मैं हुणे वापस सोनी हाँ करन दे लई ढेर सारियां गल्लां ते सुनाउण दे लई सोहणे सोहणे गीत। उन्हां समां इन्हां गीतां दे नाल कर लैणे शुरुआत।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी।
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी आयो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो माधुरी दीक्षित परदे ते देख के ना अज भी एक अपनापन महसूस होंदा है। कदे हम आपके है कौन दी निशा ते कदे दिल तो पागल है दी पूजा ते कदे थक थक गल, पर मां बहन विच ना ओ कुछ अलग ही नजर आई है। उन्हों का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है जिस विच उन्होंने हमने बहुत मतलब इस तरह के किरदार निभाए हैगे है जिहड़े बहुत घट देखे असी। इत्थे वो ना किसी प्रेम कहानी का हिस्सा है ना किसी आदर्श मां का किरदार निभा रही है। इत्थे वो एक विधवा महिला के किरदार विच है जो अपने हिसाब नाल जिंदगी जीती है ते शायद यही गल लोगों नूं सब तो ज़्यादा खटकती है। तो हुण मैं जो सोचा कि जदों ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी हैगी है तो क्यों ना इस दा थोनों मैं रिव्यू दे दां, है ना, बनदा है ना देना रिव्यू। तो चलो फिर देखते हैं कि की कहिंदी है पब्लिक इस फिल्म दे बारे में।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 एम ते जी आज के संदेश अलग दे नाल सी बने हुए। सब तो पहला गल कर लैंदे आ कहानी दी कि कहानी किस तरह की हैगी है। तो देखो माँ बहन की कहानी कुछ इस तरह की है कि रेखा यानी कि माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित के किरदार का नाम है रेखा। अपनी सोसायटी विच चर्चा का हिस्सा बनी रहती है, विधवा है, सजदी संवरती है, खुल के बोलती है, अपने हिसाब नाल जिंदगी जींदी है। यही गल नेड़े दे लोकां नूं पसंद नहीं हुंदी, लोकां ने उन्हां दे बारे विच अपनी अपनी राय बना रखी है। दूजे पासे उन्हां दी वड्डी बेटी जया यानी कि तृप्ति डिमरी अपनियां परेशानियां विच उलझी हुई है। वह मां बनना चाहती है, IVF करवाना है, इस दे लई 5.5 लाख रुपए चाहिए। आर्थिक दबाव है, निजी जिंदगी दियां उलझणां वक्खरियां। इस विचकार रेखा दा घबराए हुए फोन आता है। जया ते उन्हां दी भैन सुषमा यानी कि धारणा दुर्गा तुरंत मां दे घर पहुंचदियां ने। घर दे अंदर दा नजारा देख के दोनों दे होश उड़ जांदे ने। कमरे विच गुप्ता जी यानी कि रवि किशन पए हुंदे ने। उन्हां नूं यही लगता है कि उन्हां दी मौत हो चुकी है। रेखा दा कहना है कि एक हादसा है, पर मामला इना सीधा नहीं हैगा। पुलिस नूं खबर करन दी बजाय मां ते बेटियां पहला खुद ही स्थिति संभालन दी कोशिश करदियां ने। मुसीबत तद होर वध जांदी है जद सामने गुप्ता जी दे घर विच उहनां दी बेटी दी सगाई दियां रस्मां चल रहियां हुंदियां ने। मेहमाना दा आउणा जाणा लग्गिया रहिंदा है, तां जे विच इक छोटी जी गलती भी वड्डा बवाल खड़ा कर सकती है। इस बाद झूठ गलत फहमियां ते लगातार बिगड़दे हालात कहानी नूं अगे वधाउंदे ने।

0: इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ ममा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
10: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
10: लेकिन ममा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
11: मुंडा साधु।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए। देखो हुण कहानी की गल कर ली हैगी है तो हुण गल एक्टिंग की कहानी बनती हैगी है ना कि इस विच एक्टिंग किस तरह की हुई है। तो फिल्म की सब तो वड्डी ताकत इसके कलाकार ही हैगे ने। माधुरी दीक्षित लंबे समय बाद अजिहे किरदार विच नजर आई है जिथे उन्होंने खुल के खेलण का मौका मिले। रिकर दे किरदार विचो मजेदार भी है ते भावुक भी है, कई जगह हैरान भी करती है। सब तो चंगी गल यह है कि वह किरदार नू जरूरत तो ज्यादा नाटकीय नहीं बनाती। फिल्म दे कई यादगार सीन्स उन्होंने हिस्से आए हैगे ने ते वो इस विच पूरी तरह असर छड़ती है। तृप्ति डिमरी की जी गल करिए तृप्ति डिमरी फिल्म की सब तो प्रभावशाली परफॉर्मेंस दिंदी है। जया के किरदार विच उन्होंने बेचैनी झुंझलाहट ते थकावट लगातार महसूस होंदी है। कई सीन्स विच वो बिना ज्यादा डायलॉग्स से भी अपने किरदार की जिहड़ा मेंटल स्टेटस है ना दर्शा चाहती है। फिल्म का इमोशनल पक्ष काफी हद तक उन्होंने मोढ़ियां ते टिकया है ते वो इस नूं चंगी तरह नाल संभालती भी हैगी है। वह धारणा की गल करिए धारणा दुर्गा भी वधिया काम करती है ते कहानी विच जरूरी एनर्जी लैके आती है। माँ ते भैण दे विचकार फसे उन्होंने किरदार विच कई मजेदार पल है कि नहीं। रवि किशन भी प्रभाव छड़दे ने, उन्हां दा किरदार कहानी दे अहम मोड़ां विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। परेश रावल बहुत ही छोटे रोल विच है कि नहीं, उन्हां दा किरदार छोटा थोड़ा अधूरा जिहा लगता है। गीतांजलि कुलकर्णी हमेशा दी तरह भरोसेमंद, अरुणोदय सिंह, जतिन सरना ते बाकी कलाकार भी अपने हिस्से दे काम नाल पूरी ईमानदारी करदे ने।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसौनी वनसरों वाले ते जी आज संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। कोई भी कहानी हैगी है ना वो उस डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन किस तरह का होया है, क्योंकि वधिया डायरेक्शन की कहानी हमेशा वधिया ही हुंदी है। तो इस दे जे डायरेक्शन की आप गल करिए ना तो सुरेश त्रिवेणी की सब तो वड्डी खूबी उन्होंने किरदार ही हैगे ने। फिल्म विच भी वो अजिहे लोगों की कहानी कहिंदे ने जो असली लगती है। रेखा जय ते सुषमा सिर्फ कहानी नूं अगे वधाउण वाले किरदार नहीं बल्कि अपनी अपनी परेशानियां ते कमजोरियां दे नाल नजर आते हैं। फिल्म की एक दिलचस्प गल यह है कि रेखा के किरदार के जरिए समाज की सोच का हल्का अच्छा तंज किया गया। एक विधवा महिला जो अपने हिसाब नाल जिंदगी जींदी है, स्लीवलैस ब्लाउज पाउंदी है ते किसी की परवाह नहीं करती, वह पूरी कलोनी की नजर की समस्या बन जाती है। फिल्म बिना भाषण दिते इस सोच नू सामने रखती है। डार्क ह्यूमर भी कई जगह अपना काम करता है, खासकर उस सीन्स जिथे तीनों महिलावां हालात संभालण दी कोशिश विच उलझियां होईयां है कि ने। इन स्थितियां विच कई मजेदार पल भी निकल के सामने आते हैं।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।
1: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जीआर चे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए। हुण गल स्क्रीन प्ले दी भी कर लैने आ। तां देखो, हालांकि फिल्म दा स्क्रीन प्ले हर जगह एक जिहा मजबूत नहीं है, इंटरवल तो बाद रफ्तार थोड़ी हौली पैंदी है, कुछ हिस्से जरूरत तो ज्यादा खिंचे हुए लगते ने। फिल्म समाज, रिश्तिया ते महिलावां नूं लैके बनी धारणावां दीआं कई गल्लां छेड़ती है, पर उस विच उहदी कुछ होर गहराई नाल दिखाया जा सकता सी। इही वजह है कि अपने विचार होने के बावजूद फिल्म हर जगह उन्ना असर नहीं पाती जिन्नी दी उम्मीद बनाती है।

0: जा रही हो।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just an
4: alarm. यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
3: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण देखो गल है की है जिहड़ी ओह कमियां दी तां जरूर बनदी, मोटियां मोटियां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सदियां हैगियां। हुण होर जे कमियां दस्सां तां कहानी विच ना कुछ अजिहे सीन हैगे है जो फिल्म नूं भटका भी दिंदे ने, जिस विच इकल्लेपन दे कारण रेखा दा दूसरे पुरशां दे नाल संबंध रखणा ते गर्भवती हो जाणा, सच ते पर्दा चुकण तो बाद उस पुरश दा ठग निकल जाना। इस पूरे सीन दा कुछ समझ नहीं आता, छोटे जे शहर विच रहण वाली रेखा दा किरदार इन्ना बिंदास किवें हैगा, उस दे पिछे भी एक छोटी जी कहानी हुंदी तां शायद ज्यादा लगाव होना सी। बाकी जी मैं तुहानूं दस्सदा हैगा कि खिच्ची भी थोड़ी जी ज्यादा हैगी है।

0: बचते।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
3: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नूं छू जाण वाली अते रूह नूं हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
4: देखो सच बता दो।
5: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनूं सच्ची कुछ नहीं पता।
3: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नूं तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसौनी 101 एम ते जी आर छे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण गल करदे आं कि फिल्म नूं देखिए या ना देखिए। देखो मां बहन परफेक्ट फिल्म पूरी परफेक्ट नहीं हैगी पर मनोरंजन दे हिसाब दे नाल सही है, एंटरटेन करूगी तुहानू। माधुरी दीक्षित ते तृप्ति टिमरी इस दी सब तो वड्डी ताकत है ते डार्क कॉमेडी दा अंदाज फिल्म नूं अलग पहचान दिंदा है। दोवां ही थावां दे कुछ हिस्सियां नूं संभाल लैंदियां ने दोनों कलाकार, तीनों ही कह सकते हैं, जिथे लगता है कि कहानी थोड़ी जी कमजोर होंदी जा रही है। जेकर तुहानू किरदारां ते आधारित कहानियां ते डार्क कॉमेडी पसंद है तो मां बहन तुहानू निराश नहीं करूगी। कुछ कमियां होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में शामिल है जो भीड़ तो वक् नजर आंदियां ने, अंत तक थोड़ा ध्यान हैगा जिहड़ा बनाई रखदियां ने।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

हैं रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमत प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

प्रिय श्रोतागण, आज आप जानते हैं कि क्या है। आज 6 तारीख जून सन 2026 है, 6626 क्या बात है। और चलें, मौसमी दफ्तर ब्रिजवन ने हमें निम्न मौसम की खबर प्रदान की है, जिसके अनुसार आज पूरे साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में धूप निकलेगी। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद भाई। 6:32 पर सूर्य उदय हुआ है, 5 सूर्य अस्त होगा। और हवा का रफ्तार 10 प्रति घंटा है। इस समय तापमान 4 से लेकर 10-11 डिग्री है यहाँ पर ब्रिस्बेन में, सुबह के बेला है। और धूप निकलने के साथ साथ 22 रहेगा ब्रिस्बेन में दिन में, रात्रि को 11। और इप्सविच में 22 दिन में, रात्रि को 5, हवा का रफ्तार 8। सनशाइन कोस्ट में 21 दिन में और रात्रि को 12, हवा का रफ्तार 18। गोल्ड कोस्ट में 22, 11 दिन में, रात्रि को 13, हवा का जो रफ्तार है वो 13 रहेगा दिन में। और 22 रहेगा, एक बार कर दूं, गोल्ड कोस्ट में 22 रहेगा दिन में, रात्रि को 11, हवा का रफ्तार 13। नैनीले चलते हैं, जहां ज्यादातर धूप निकलेगी, 28 दिन में रहेगा, रात्रि को 24, हवा का रफ्तार 11। 6:30 सूर्य उदय हुआ है, 5:40 पर सूर्य अस्त होगा। और लंबा समय इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 30 रहेगा अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 21, हवा का रफ्तार 16। और सुबह में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, 28 दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 19। ओकलैंड ले चलते हैं, जहां पर हल्की बारिश हो रही है, 17 है तापमान दिन का और रात्रि का 13। 21 हवा का रफ्तार, 7:27 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:11 पर सूर्य अस्त होगा। और वेलिंगटन में हल्की बारिश हो रही है, 14 दिन में, रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 21। नई दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर धूप निकली हुई, यहां समा है भाई, बहुत गर्मी है। नई दिल्ली में 39 है मैक्सिमम, 29 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। 5:23 पर सूर्य उदय होगा और 7:15 सूर्य अस्त होगा। अमृतसर में मैक्सिमम 38 विद वेरी हॉट सनी डे, 27 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। एंड मुंबई सिमला 34 मैक्सिमम विद सनशाइन एंड 30 मिनिमम, 18 विंड स्पीड। तो ये कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर थे जो आपके समय में मैं पेश किया हूँ। अमला जी गुड मॉर्निंग, और आपका शाम है तो गुड आफ्टरनून आपको। और बाकी श्रोतागण जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, या घर पर, या फिर गाड़ी में, या अपने ऐप पर, स्वागत है जी। शनिवार आया चला गया, फिर शनिवार आ गए, मैं तो घबरा गया भाई, कितने रफ्तार में हफ्ता जा रहा है। दिन आता, दिन चला जाता, बदल जाता, फिर शनिवार आती है, और फिर हम खींचे यहाँ चले आते हैं आपके सेवा में। उम्मीद कर रहा हूँ आपका दिन अच्छी तरह बीता होगा। हमारा स्टूडियो का नंबर है 3279-1701, 3279-1701। अगर आपको मैसेज देना है या कुछ आप बात करना चाहते हैं तो 0411-127-035 मेरा मोबाइल नंबर है, 0411-127-035। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इस समय जबकि 26 रह गए हैं 7 में, आपके लिए आज का जो पहला गीत है, बहुत खूबसूरत सा गीत लेकर आया हूँ। वैसे आज गाने लेकर आया हूँ, लेकिन रास्ते में दिमाग थोड़ा बदल रहा था, मैं सोचा कुछ और सुना दूँ, देखता हूँ क्या हाल है और कैसे बदलता है रंग रूप, तो उसी प्रकार से हम बदलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो गीत है, इस गीत को बहुत खूबसूरती से अदा किया है उदित साहब ने, और प्यार हो गया फिल्म का गाना है, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। अब शायद कुछ लोग ऐसे होंगे, रात भर किसी की याद में ऐसी बातें करते रहेंगे, सोचते रहे होंगे, खाट पर नींद नहीं आई होगी। तो हम भाई चलो थोड़ा दूर करते हैं, कौन जानता है किसकी मुलाकात कब, कहां और कैसे हो जाए, तो गीत का आनंद लें।

0: So cute.
1: जय मित्रों, कैसे लगा? तेरी आंखों में मेरे आंखों में बसा है तेरा ही एक नाम, बहुत खूबसूरत सा गीत था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ये कुछ ऐसे गाने हैं जो हमेशा हमें याद आते हैं और हमारे दिल को छू लेते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, एक और ऐसे ही मज़ेदार गीत हैं। और इस बार क्या बोलते हैं ना, कभी कभी आप भी जानते हैं कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं या कोई महफिल में बैठे होते हैं, कोई हमें गहरी निगाह से देख ले, और जब गहरी निगाह से देख ले तो हम उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, हमारा दिल खींचे चला जाता है और कुछ अनुभव भी अंदर अंदर होने लगते हैं। तो उदित साहब ऐसा ही गीत लेकर आए हैं, जादू भरी आंखों वाली, सुनो।
2: मुझको

0: मित्रों, जादू भरी आंखों वाले सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा ना करो। ये था उदित जी का बहुत ही लोकप्रिय गीत, और ये गीत को मैंने लिया था फिल्म दस्तक से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक विज्ञापन बजा देते हैं आपके लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जबकि 13 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नामक कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार लता जी आ रही हैं उदित जी के साथ। अब देखिए, मेरी आंखों भरी, पहले आप सुन रहे थे गाना जो था मेरी सांसों में बसा है, फिर जादू भरी आंखें। अब देख लिए, सब कुछ हो गया, नज़दीक आ गए, तो बोलते हैं व्यक्तिगत बातें बयां करने जा रहे हैं किस तरह से, कि तुम क्या मिले।

0: जी मित्र, तुम क्या मिले, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत था। आपके 8 मिनट रह गए इस समय 7 बजने में, और चलें आगे बढ़ें, कुछ विज्ञापन भी सुनते चलें। दो बजाएंगे आपके लिए, पहला ये है।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
0: जी हां मित्रों, चलते हैं विज्ञापन के बाद। फेस सेगमेंट का आखिरी गाना है अजीले एक पल में, दिल को छू लेने वाला ये दो गाना है। उदित साहब आज बहुत छाए हुए हैं, इनका साथ इस बार दे रही हैं अलका याग्निक जी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इस गीत को संजय छेल ने लिखा है और हिमेश रश्मैया जी का संगीत है, इसीलिए प्यारा सा, बहुत प्यारा सा गीत है, फॉर यू ओनली।

0: जी मित्रों, आज जीने एक पल में 100 जन्म, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप संगीत सरगम प्रोग्राम परमानंद के साथ में सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा।
1: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
0: जय मित्रों, रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में बस 7 बजने ही वाले हैं और समय हुआ एक शोक सूचना का। लीजिए परमानंद से शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिजबन के सतबीर सिंह जी के पिता जनरल सिंह जी के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिजबन में हो गई। दाह संस्कार आज दिन में 11 बजे से माउंट थॉम्सन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलैंड पार्क में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसे मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिस्बेन के सतबीर सिंह जी के पिता जनरल सिंह जी के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून यानी कि आज दिन में 11 बजे से माउंट थॉम्सन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलैंड पार्क में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ। लोगों से बतला दें, श्रोतागण से बतला दें कि जो शोक सूचनाएं हैं रेडियो ब्रिजबान के माध्यम से मुफ्त में पेश करते हैं आपके लिए। इतना ही जो हमारे यहाँ का रिक्वायरमेंट्स हैं रेडियो ब्रिजबानी के कि लिखित रूप में हमें शोक सूचना मिलना चाहिए टेक्स्ट मैसेज द्वारा, और अंग्रेजी में भी कोई बात नहीं या हिंदी में जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और व्यक्ति जिसका निधन हुआ है उसका नाम कब हुआ कहाँ हुआ अगर बोलना चाहें कितने बजे हुआ ये भी जोड़ सकते हैं, और फिर उनकी जो अंतिम संस्कार है कब होगा कहाँ होगा कितने बजे से होगा ये जानना बहुत जरूरी है, और आखिरी में एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिससे हम संपर्क कर सकें कि वो व्यक्ति ने जो सूचना हमें दी है वो सच्चे। इतने बातें हैं लेकिन लिखित रूप में, और जैसे मिल जाएगी हम इसको पेश करते रहेंगे क्योंकि ये रेडियो जो है 24 घंटे चलती है, हमेशा समाचार के बाद तो हम बोलते ही हैं और उसके अलावा दिन में जब समय आता है तो खुद बजने लगता है। तो याद रखें दोस्तों, ये शोक सूचना के विषय में था। और बहुत लोग फोन करके पूछते हैं कि भैया कितना खर्चा है, तो खर्चा कुछ भी नहीं है, एक समाज के सेवा के रूप में मुफ्त में हम आपके लिए करते हैं। तो अब जबकि 7 बजकर हमारे स्टूडियो में 2 मिनट हुए हैं तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, 2 विज्ञापन बजाते हैं, फिर उसके बाद पुराने गीतों की तरफ आपको लेकर चलेंगे।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
3: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
0: जो मित्रों, ऐसे गाने कहाँ सुनने को मिलेंगे आपको, और महफिल बहुत बढ़िया रहेगा, याद रहे तो जरूर आए आप। मुफ्त में है एंट्री और यहाँ पर रात बड़ा रंगीन रहेगा। आई होप मोस्ट ऑफ यू विल कम एंड सपोर्ट दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। एक और खबर।
5: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
6: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: इस समय 5 मिनट हुए हैं 7 बजकर। शनिवार का सुबह है, खूबसूरत सा मौसम है, धूप निकलेगी, तापमान 22 तक रहेगा, अच्छा दिन है, घूमने फिरने के लिए बहुत बढ़िया सा समय है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब कभी कभी रिश्ते में थोड़ा बहुत दरार होते हैं, पुराने गीतों के कार्यक्रम में दोस्तों आपका स्वागत है। बारात फिल्म का नाम है, 1960 में रिलीज हुई मूवी है, और इस मूवी में मुकेश साहब ने बहुत ही बेहतरीन गीत गाए हैं। लेकिन जो गीत मैं चुना हूँ आज, ये गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरी जुबानी से नहीं, मुकेश साहब की जुबानी से।

0: जय मित्रों, मुफ्त हुए बदनाम किसी को से हाय दिल को लगाकर बहुत ही खूबसूरत गीत था। और कभी कभी ऐसे होता है किसी को हम अपना मान लेते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं, लेकिन फिर क्या होता है आप जानते हैं, रिश्ते में दरार पैदा हो जाते हैं, बेसमझ या ना समझ के कारण भी कभी कभी कुछ बातें ऊँची नीची हो जाती हैं। रिश्ते में एक चीज हमेशा हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए इसके विषय में, प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर है और रिश्ता भी अपनी जगह पर है। रिश्ते में कभी दरार ना पैदा हो ये सोचकर चलें, क्योंकि जब हम ब्याह किसी से करते हैं आप प्यार मोहब्बत में फंसते हैं या उनको अपना मानने लगते हैं तो कहते तालियां दोनों हाथों से बजती है, तो बराबर का रखें वो मान सम्मान हमेशा दीजिए। दिल दुखाए ना किसी का, प्यार से बात करें, ऐसे शब्द के उपयोग करें जो दिल पर चोट ना पहुंचाएं, और फिर एक दूसरे का जब मान सम्मान करोगे उनको किसी तरह का ठेस ना पहुंचाओगे तो रिश्ता बड़ा घनिष्ठ रहेगा, रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि जब मान सम्मान देते हो ना तो दोनों बराबर के हो गए, और ऊंची आवाजों में बात नहीं करना, धीमी गति से बात करना, प्यार से बात करना, मिठास से बात करना, ताकि किसी को, और जब कभी दरार होगा भी छोटा मोटा ना, मुंह फुला कर अगर यहाँ वहाँ चले गए तो फिर बहुत जाकर सोचेंगे, पछताएंगे कि भाई मैं क्या सोचकर ऐसा क्यों कदम उठाया। और ख़ास तौर से उस समय बातें ज़्यादा असर करती हैं, बहुत दिल पर चोट पहुंचाता है, आँख भी भर आते हैं, आंसू भर आते हैं, कि जब वो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, मालिक को प्यारा हो गया, यहाँ से उड़ान भर चुके हैं, किससे जाकर कहोगे कि यार ऐसे हो गया, मैंने ऐसे किया। क्योंकि वो समय था जब आपने किए और फिर अपने जिद में रहकर उससे को जोड़ना फिर से वापस नहीं समझा। तो ये बात याद रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, प्यार से बात करें, खुशी खुशी जीवन को व्यतीत करें, रिश्ते में हैं तो सब चीज़ से भरपूर करें एक दूसरे को, और ऐसे करें कि खुश अंदर अंदर एक ऊर्जा जो है ना खुशी का आए, और तब अब देखिए जीने की मज़ा कुछ और है। बहुत सारे गाने हैं मगर वो नहीं बजाऊंगा मैं, चलो हम पहले चलते हैं आपके लिए एक खबर ले लेते हैं, खबर के बाद हम आएंगे आपके पास रफी जी के साथ।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: जय मित्रों, चलें आगे बढ़ते हैं देवानंद साहब के सामने, साथ चलते हैं हम। कहाँ चलते हैं? देवानंद साहब रफी जी के गाने पर बहुत ही बेहतरीन अभिनय करते हैं और किए हैं, और उनका एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, सुपरहिट गाना, जिया वो जिया कुछ बोल दो आपके लिए।

जमित्रो जिया जिया कुछ बोल दो, बहुत प्यारा सा गीत था। और किसी का टेक्स्ट भी है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें हमेशा प्यार की बोली बोलनी चाहिए। सही बात है, प्यार की बोली बोलना ही चाहिए। तो ये था बहुत ही प्यारा सा गीत जो अभी आपके सेवा में हमने पेश किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। पुराने गीतों का कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे गाने बजाते हैं आपके लिए। और एक और गीत है, ये भी बहुत बढ़िया सा गाना है, आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद हम राव जी को लेकर आएंगे। और गीत है लता जी का गाया हुआ, चूड़ी मजा देंगी कंगना मजा। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे हम।

0: जय मित्रों, चूड़ी मजाना देगी, चंदन मजाना देगा, ये आप सुन रहे थे और उम्मीद कर रहा हूँ पुराने गीतों का आज का आखिरी गीत था, अच्छा लगा होगा। और रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान आप सुन रहे हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय लगभग 21 मिनट हुए हैं 7 बजकर, और खुशी की बात है हमारे साथ जुड़े हैं राव जी। राव जी नमस्कार।
1: नमस्कार परमानंद जी, आज रेडियो पर अच्छे अच्छे गाने आते हैं।
0: अच्छा जी,
1: हाँ आप चुन चुन करके लाते हैं तो बहुत दिल लगता है कि ऐसे प्रोग्राम आवे तो हम मिस नहीं करें ना।
0: अच्छा जी, थैंक यू।
1: हाँ तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाता है। तो आज का जो मनोवृत्ति है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा
0: जी।
1: आज के सारे सुविधा साधन प्रकृति के विरुद्ध है, आप कुछ और सोचे और साधन कुछ और मिलता है। हमारे लिए धूप और हवा आवश्यक है, पर वह आज के मकानों में सुलभ नहीं है। धूप तो मकानों में घुसती ही नहीं, उजाला तो हो जाता है लेकिन धूप नहीं आती है। हवा भी कृत्रिम साधनों से लाई जाती है और हवा के लिए तो फैन ऑन करना पड़ता है और घर में तो कुछ होता ही नहीं, क्या करें। इससे शरीर ही नहीं बिगड़ा है, आदमी की मनोदशा भी बिगड़ी है, मूड भी बिगड़ने लगा है। आप कई प्रकार के बातें सोचते हैं लेकिन अचानक क्या होता है। आज का समूचा परिवेश मनोदशा को उत्तेजित करने वाला है, बिगड़ने वाला है। आदमी की सहन शक्ति कम हुई है और इसका कारण है सुविधावादी मनोवृत्ति। इस वृत्ति ने सहन करने की प्राकृतिक क्षमताओं को नष्ट कर डाला है। सुविधाओं को भोगते भोगते आदमी उनके वशवर्ती हो गया है। सहन शक्ति चूक गई है, केवल शारीरिक सहन शक्ति ही नहीं, आदमी का मन भी कमजोर हो गया है। कठोर जीवन और श्रम का जीवन जीना अच्छा होता है, परिश्रम करें लोग और उससे उसका जीना अच्छा होता है, पर उसे भुला दिया गया है। इन सुविधाओं ने आदमी का स्वार्थ और क्रूरता का भाव भी उजागर किया है। हर एक मनुष्य सारी सुविधाएं स्वयं भोगना चाहता है, दूसरों के प्रति उसका वैसा भाव नहीं है। महात्मा गांधी इलाहाबाद गए, आनंद भवन में ठहरे, प्रातःकाल हाथ मुंह धो रहे थे। पास में जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, बातचीत चल रही थी। गांधी के छोटे का पानी समाप्त हो गया था, गांधी जी के लोटे का पानी जो समाप्त हो गया। वे बोले, ओ बात ही बात में पानी पूरा हो गया, अभी कुल्ला करना बाकी है। नेहरू ने बापू को क्या कह रहे हैं, पानी पूरा हो गया तो आप जितना चाहेंगे उतना ही आ जाएगा। यह गंगा जमुना का नगर है, यहाँ पानी की कमी कभी नहीं होगी। बापू बोले, जवाहरलाल तुम ठीक कहते हो कि वह नगर गंगा जमुना का है, किंतु इन पर अकेले बापू का अधिकार नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का इन पर अधिकार है। मैं फिजूल पानी खर्च करूं ये अनुचित है। इस प्रकार नेहरू और गांधी के बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो देखिए, पानी की कीमत हमको हर एक गृहस्थी में करना चाहिए। पानी अनायास और बेफजूल नहीं खर्च करना चाहिए। पानी एक बहुत बहुमूल्य तत्व है इंसानों के लिए। तो ये थी एक छोटी सी आज की वार्तालाप संगीत सरगम में।
0: धन्यवाद राव जी, और मिलते हैं शनिवार को, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी।
1: जी
0: तो मित्रों, ये थे राव जी और अपनी वाणी सुना रहे थे, और हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए गीतों में लाइन किया, मगर वो लाइन करने से पहले कुछ दिमाग में बात दौड़ पड़ा राव जी के बात सुनकर। वो कह रहे थे कि जो ये वर्तमान समय की बात कर रहे, मैं घर पर यहाँ देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं, जो लोग वेस्टर्न सिस्टम में हैं और जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो मैं देख रहा था, मैंने बोला कितना आसान है यहाँ ना, सुबह उठे अंधेरा है, उंगली से बटन दबाए बिजली आ गई, बत्ती आ गई, जलने लगा। फिर मैंने बोला देखिए, उन दिनों की बात है, गांव में जब हम निवास करते थे, जहां बिजली नहीं, नल का पानी नहीं, रास्ता आप जानते धूल का रास्ता था, या ग्रेवल रास्ता था, कच्चा रास्ता जिसको बोलते हैं, यहां पर हमारे पास सब कुछ है। तो मैंने बोला किसको धन्यवाद दें, मालिक को ही धन्यवाद देना पड़ेगा कि मालिक की बड़ी असीम कृपा बनी हम सब पर कि हम ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहाँ सब बटन स्विच ये सब करने से हो जाता है। फोन देखिए, टेलीफोन भी है, कहीं जाना, गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है, मूवी देखना है, सब यहाँ है, हमें सब कुछ मिला हुआ है। फिर भी हम क्यों इतने स्ट्रेस में हैं, कितना चिंता हम क्यों कर रहे हैं? और जिनके पास भाई कुछ भी नहीं है, मैं बोलूँगा मिलान में तुलना कर रहा हूँ बस, कि जहाँ पर फीडा रोड है, कच्चा रास्ता है, पानी में लोग जाएंगे तो जूता जो है जूता मैला हो जाएगा, फिर उसको पोछते, मैं भी किया था अपने टाइम में, बचपन में किया था मैं भी, तो ये सब होता है। और नल का पानी नहीं होने के कारण कुएं में जाए तो कुआं से पानी वो निकालें, निकालने के बाद उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद स्नान करें ठंडे में। यहाँ पर तो भाई बस हॉट वाटर सिस्टम है, पानी आ रहा है गर्म गर्म, फट से नहा लिए, तैयार हो गए, निकल पड़े। और वहाँ कुछ ऐसे सुविधाएं नहीं है, बहुत लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है, लेकिन सब अपना अपना कर रहे हैं ना। लेकिन हमें ये है, इन्हीं से यही सीख मिलता कि भाई जो मालिक ने ये धन्यवाद देना है, जिसने ये सब हमें प्रदान किए उसको भी धन्यवाद देना है, माता पिता जो भी ने जो मेहनत करके यहाँ तक हमें पहुँचा उन्हें भी धन्यवाद देना। तो ये कुछ बातें याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो राव जी के बानी में मैं भी जोड़ देता हूँ कि वी आर सो लकी टू लिव इन दिस कंट्री। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभिजीत साहब बोल रहे हैं कि एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आए,

0: जी मित्रों, चंचल शोक हसीना आप सुन रहे थे, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। और आगे बढ़े विज्ञापन की तरफ, कुछ विज्ञापन बजा देता हूँ। तो पहला ये,
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

मित्रों 23 मिनट रह गए 8 बजने में, और 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुमार सानू जी आ रहे हैं अलका याग्निक जी के साथ। आज पहली बार दिल की बात की है। अब तक

जी मित्रों, आज पहली बार दिल की बात की है और हम याद कर रहे हैं उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को याद कर रहे हैं। आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह बड़ा शुभ तथा मंगलमय हो और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत सारी खुशियां हमारे तरफ से आपके जीवन में आए और हमेशा आते रहें और आप प्यार से अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। तो ये कुछ बातें हैं हमेशा हम कहते हैं भाई, लेकिन मान सम्मान के साथ सब कुछ करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो जन्मदिन है बहुत बहुत मुबारक जरूर होगा, बहुत सारी बधाइयों के साथ, प्यार के साथ, बच्चों के साथ, परिवार में जो हैं उनके साथ मिलजुल कर सब कुछ करते रहें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी दुनिया है तुझ में सनम, सोनू निगम, कविता कृष्णा मूर्ति जी इसे अदा कर रहे हैं।

0: समय 12 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, आगे बढ़ें, विज्ञापन के तरफ भी ध्यान देता हूं भाई। चलें विज्ञापन सुने, एक विज्ञापन बजे, दो बजाते हैं।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: दोस्तों 10 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, आगे बढ़ते हैं। एक दो गाना है अरिजीत सिंह साहब और अलका जी की आवाजों में, सुनाते हैं।
4: नो सीरियसली दारा, ये कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं? ऐसा मत करो, वेट करो,
5: आएगा।

जी मित्रों, अगर तुम साथ हो, आप सुन रहे थे, और चलें आगे बढ़ते हैं, खबर लेते हैं, उसके बाद एक और गीत, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे, 8 बज जाएगा तब तक। चलो सुनते हैं क्या जाए। अच्छा जी, ये बजाते हैं आपके लिए, सुनाते हैं इसे।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और मैं हूं परमानंद, संगीत सरगम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आए हैं बराती हम बारात लेकर। प्यारा सा गीत है आपके लिए,
2: आप लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा गाना लेकर आई हूँ। गाना का बोल है आए हम बराते बारात लेके, तो पूरा गाना सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं।

0: लेके।
1: जी मित्रों, ये गीत नहीं बजाना था, ये लोकल सिंगर की आवाज में है, तो चलो हम एक खबर लेते हैं, उसके बाद सही गाना आपके लिए बजाते हैं, ठीक है? तो चलें एक और खबर सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे देसी घी की तरफ चलते हैं।
2: मजा नहीं आया?
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
1: मित्रों आगे बढ़ते हैं
6: बियॉन्ड व्हाट यू थिंक। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस। Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Yeah, dosto, aage badhte hain is geet ke saath. Sonu Nigam ji hain aur saath de rahe hain Alka ji.

0: मित्रों, इस गीत को ही छोड़ रहे हैं क्योंकि ये 8:01 हुआ है और अब समय हुआ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का। और अभी से लेकर ठीक 8:16 तक हम पेश करेंगे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। आपको रानी क्रिएशंस के प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। हम भेंट कर रहे हैं आपको रानी क्रिएशंस के ओर से और आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ तथा मंगलमय हो।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: और स्वागत है मित्रों आप सबका रानी क्रिएशंस के साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में। और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है रानी क्रिएशंस के शॉप में। यहाँ पर ज्वेलरी गोइंग फ्रॉम $16 सेट और साड़ीज फ्रॉम $35 ईच और बाकी जो गार्मेंट्स हैं क्लियर कर रहे हैं ज्वेलरी वगैरह और लेडीज वेयर पर अप टू 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं और रानी क्रिएशंस का विज्ञापन, तो आप रानी क्रिएशंस शॉप में आ सकते हैं। आज खुली रहेगी 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। कल रविवार है, कल 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक और बाकी दिन सप्ताह के बाकी दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहती है 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो आपका स्वागत रहेगा रानी क्रिएशन शॉप में। आकर मनपसंद के कपड़े आप देखकर और खरीदिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा गीत है फर्स्ट साइट वाला लव।
2: ओ फर्स्ट साइट वाला लव करा गई ओए,

कमाल की बात पता क्या है, और भी लोग खड़े थे वहां पे, पर उसने मुझसे आके पूछा, एक्सक्यूज मी, इज इट 12/25 मॉडल टाउन इन अ मार्केट? सबकी शक्ल देखने वाली थी, जल ककड़ू कहीं के।

0: करा गई है।
1: जी हाँ, फेसाइट वाला लव करा गई हुए रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फैशन की दुनिया। याद रहे यहाँ पर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है और आपको बहुत सारे रीजनेबल दामों में इस समय कपड़ों का जो सेल लगा हुआ है उससे आपको फायदा होगा। और ज्वेलरी $16 पे सेट बींग क्लियर और सारीज फ्रॉम $35। इसके साथ साथ बहुत और कपड़े हैं जिस पर अप टू 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बच्चों के भी नए नए कपड़े आए हैं और साथ में महिलाओं के लिए और मर्दों के लिए। तो फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस। 10 बजे खुलेंगे और शाम को 4 बजे तक चलता रहेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। शादियां बहुत घरों में हो रही हैं। एक शादी का गीत चुना हूँ, आज शादी वाला मूड है तो सुनते हैं।

0: जी मित्रों, जो कपड़े आप इस गाने में देख रहे हैं, शादी के कपड़े हैं, सब कुछ रानी क्रिएशन शॉप में उपलब्ध हैं। बस पूरे परिवार के साथ आइए और देखिए मनपसंद के कपड़ों को यहाँ से खरीदिए और बचत कीजिए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल से।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, आप सही सुना, और यहाँ पर आकर आप सब कुछ खरीद सकते हैं, everything under one roof. तो चलो आगे बढ़ते हैं। शादी का सफर गीत मैं चूज कर रहा था तो वो आया नहीं है, मैं देखता हूँ कहाँ है, से बजाते हैं। इन द मीन टाइम ये बतलाना है आपको कि रानी क्रिएशंस में आपको हर कुछ मिल सकेगा, और यहाँ पर आप आएंगे और कपड़ों को खरीदेंगे तो आपका बचत होगा और साथ में अच्छे अच्छे कपड़े आप बहुत ही उचित दामों पर खरीद सकेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा गीत बजा देता हूँ। वो गाना मिला नहीं जो मैं सोचा था, बहुत बढ़िया सा गीत था, लेकिन ये सुनिए आप।

0: दोस्तों एक बात और बतला दें कि रानी क्रिएशंस में मेंस का वेडिंग आउटफिट्स है, इंडो वेस्टर्न सूट्स आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ बाकी आप सूट्स भी खरीद सकते हैं रानी क्रिएशंस शॉप में, मर्दों के लिए, औरतों के लिए शादी के हर प्रकार के कपड़े और मैचिंग ज्वेलरी भी आपको मिलेगा बहुत ही उचित दामों पर। तो आप आइए, वाइड रेंज में देखिए, बहुत सारे साड़ीज हैं, एक्सेसरीज हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगले शनिवार को एक बार फिर एक और सेगमेंट लेकर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं रानी क्रिएशंस का इस प्रोग्राम से आज और अगले शनिवार को एक बार फिर मिलेंगे, तब एक और सेगमेंट लेकर हम उपस्थित होंगे। फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स, रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा। और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली डे एंड लवली वीकेंड। शनिवार को फिर मिलते हैं और इन द मेन टाइम एंजॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू। फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स, रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वुलंगेवा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: मित्रों, स्वागत है संगीत सरगम प्रोग्राम में एक बार फिर। और आगे बढ़ते हुए चलें, किशोर कुमार जी आ रहे हैं लता जी के साथ, जाने मन तुम कमाल करती हो।

0: जी मित्र, बहुत प्यारा सा गीत था, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। ये गाने कुछ पुराने तो पुराना गाना है ये, मगर बहुत बढ़िया सा गीत है। चलो एक विज्ञापन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: दोस्तों, इस समय 21 मिनट हुए हैं 8:00 और 8:30 तक आप मेरा साथ रहेगा। और आपको यह भी बतला दें कि फिर निविया जी आ जाएंगी टॉप 10 लेकर, और बाद में बाकी प्रोग्राम्स होते रहेंगे। कल आप जानते हैं रविवार है, धार्मिक प्रोग्राम से प्रोग्राम का शुरुआत होगा। वेदवाणी आपके लिए 8:00 से नंद किशोर दास प्रभु जी लेकर आएंगे, और उसके साथ ही बाद में जतीश पूरन जी आएंगे 9:00 से, तो उनका भी आप साथ दीजिएगा। और फिर रोय साहब 12:30, उसके बाद सुशीला जी आएंगी। तो ये कुछ बातें थी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सवरे घर
2: दी है मेरी जन्नत जन्नुम जुपिटर, जिधर भी हो ना निकल के पहुंच जाइए। नहीं आए ना तो जूते पड़ेंगे।

जय मित्रों, बहुत प्यारा सा गीत था और शनिवार का सुबह है। थोड़ा मूड आपका बना रहा हूँ कि आपको आज का दिन और वीकेंड अच्छी तरह से बीते। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या हुआ, कहाँ चला गया ये आज मालूम नहीं क्या हो रहा है। चलो इसे बजाते हैं आपके लिए। जिंदगी बहुत बढ़िया गाना है आपके लिए।

जी मित्रों, इसी के साथ ही संगीत सरगम कार्यक्रम के समाप्ति पर हम पहुंचे हैं और उम्मीद कर रहा हूं आज के जो गीत थे आपको पसंद आए होंगे और अगले शनिवार को एक और सेगमेंट लेकर उपस्थित हो जाएंगे संगीत सरगम का। आप अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड। इसी के साथ समाप्ति पर हम पहुंच रहे हैं। खुश रहे ना, निव्या जी का इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आएंगी। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आर्जे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी वीकेंड, वीकेंड की बहुत बहुत मुबारकबाद। आतिशबाजी होनी चाहिए, मिठाई होनी चाहिए और बहुत सारे गाने होने चाहिए। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, तुम दिवाली और वीकेंड को मिक्स तो नहीं कर रही? वेल, मैं हमेशा कहती हूँ बड़े बड़े फेस्टिवल्स की तो अपनी बात है ही, लेकिन बड़े बड़े फेस्टिवल्स सब साल में एक बार आता है। जी हाँ, लेकिन वीकेंड हमें हमेशा एंटरटेन करता है, वीकेंड हमें हमेशा सुकून पहुंचाता है, तो वीकेंड को सेलिब्रेट कीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, आतिशबाजी करने की जरूरत नहीं है, बट मिठाई तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो दूर रहिएगा। ये मत कहिएगा आपने डॉक्टर को कि मैंने थोड़ी सी मिठाई खा ली, और जब आपका डॉक्टर कहेगा क्यों खाई, तुम्हें तो पता है, आपको तो पता ही है कि आपको डायबिटीज है, क्यों खाई आपने, तो आप ये मत कह देना कि निव्या ने कहा था खाने के लिए। वो बोलेगा निव्या कौन? अरे है एक आरजे जिसका प्रोग्राम हम सुनते हैं और वो कहती है कि कोई बात नहीं, वीकेंड पे मिठाई खा लीजिए। वेल, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, थोड़ी बहुत मीठा खाने में बुराई नहीं है, बट वो भी अगर आपको और किसी को भी डायबिटीज नहीं है तो दैट इज इट। अगर वैसा कुछ भी है तो दूर रहिए मिठाइयों से। हाँ, मिठाई को शिफ्ट कर दीजिए, कुछ अच्छा चटपटा खा लीजिए। तो फिर जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा क्या क्या सलाहें देनी शुरू कर दी तुमने आते ही। अरे आपको तो पता ही है, बिना अच्छा खाने के मेरी तो कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, फिर चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, चटपटा हो या फिर क्या क्या ना हो। एंड यू नो व्हाट, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम जो है ना, मतलब जो इंडियन लोग हैं, फिर जो वो कहां भी रहे, हमारा जो खाना है ना वो बहुत ही ज्यादा चटपटा है, बहुत ही ज्यादा यमी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मतलब जब दूसरे लोग यानी कि दूसरी कंट्रीज के लोग जब हमारे खाने को टेस्ट करते हैं ना, तब वो भी हो जाते हैं एकदम सेट। दे आर लाइक वाओ, दिस इज सो टेस्टी, दिस इज सो यमी। और अगर उनको गोलगप्पे खिला दिया, पानीपुरी खिला दी ना, से वो तो उधर ही मदहोश होके गिर जाते हैं। मतलब उनके लिए तो दैट इज वे वे वे बेटर देन एनी कॉकटेल, एनी या सो या अगेन, दैट इज इट। चलिए, खाने के लिए मैंने आपको इंस्पायर कर दिया है और मैं आपको कहूंगी कि खाने के साथ साथ आपको और चीजों का भी ख्याल रखना है, वो है एंटरटेनमेंट, गपशप और अपने गेट टुगेदर्स। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी से गपशप करते हैं ना, जब आप सोशलाइज करने के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको और भी अच्छा फील होता है, तो वो करने के लिए भी निकलिए। चलिए, ये सारी की बातें तो मैं करती रहूंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी अभी के लिए बात। अभी के लिए मैं इतना कहूंगी कि हमारा प्रोग्राम हो गया है शुरू, टॉप 10 हॉट 10। और टॉप 10 हॉट 10 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेल ऑफकोर्स हम लेकर आते हैं आपके लिए वो चुनिंदा 10 गाने जो कि बहुत ही मजेदार हैं, फन है और एकदम ट्रेंडिंग है। तो सबसे पहले यानी कि 10वें नंबर के गाने के साथ शुरुआत करते हैं और वो है नाल नचना।

मैंने तो तेरे नाल नचना, मने मुझे तो तुम्हारे साथ डांस करना है। अब तुम कहो हाँ या कहो ना, डांस तो मैं करके रहूंगा। आप लोग बोलोगे कि हद है भाई, ऐसे कैसे डांस करते रहोगे? अगर हाँ करेंगे तभी डांस कर पाओगे, मतलब ये क्या बात हुई? वेल वेल वेल, यही तो बात है, जब इंडियन लोग डांस करना शुरू करते हैं तो वो बाकी सबको भी लपेटे में ले लेते हैं। मतलब आओ अब भी डांस करो, आओ अब भी डांस करो, तुड़ तुड़ तुड़ तुड़ तुड़ तुड़ ताना तुड़ जिया। सो यू नो वेरी वेल, और प्लस इतना ज्यादा मजेदार होता है इंडियन डांस, फिर चाहे हम भांगड़ा की बात कर लें, फिर चाहे हम गुजराती गरबा की बात कर लें, फिर हम चाहे राजस्थानी घूमर की बात कर लें, चाहे हम कोई भी डांस की बात कर लें, मतलब डांस ऐसा कि बाकियों को भी डांस करने पे मजबूर कर दे। सो आइए, ये तो गाना हो गया, लेकिन ये गाना जो है वो धुरंधर का है, और धुरंधर जो है वो रिलीज हो चुकी है बहुत पहले, 6 महीने हो गए इसे रिलीज हुए, और धुरंधर का कमाल आज भी चल रहा है, नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में आज भी ये है, और नेटफ्लिक्स पे आप इसे देख सकते हो, और धुरंधर दरवेंश भी अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है, तो आप उसे वो भी देख सकते हो। ये रहा धुरंधर का गाना, और इसके बारे में मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट धुरंधर। बस ये कि थोड़े कमजोर दिल के हो आप तो फिर मत देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा चीरफाड़ आपको इसमें दिखने वाली है, और आपको ऐसा लगेगा ओ माई गॉड मैं कहां आ गया। वेल या दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप रोमकॉम देखने के शौकीन हो और आप धुरंधर देखने पहुंच जाओ। बट या अगर आपको हार्ड हिटिंग मूवीज पसंद है विद द यू नो बिट ऑफ reality, then you are gonna love it. यहाँ पर अब आगे की ओर चलते हैं और 9वें नंबर का गाना आपको सुनाते हैं, जो कि सच में बेहद ही खूबसूरत है। मतलब इस गाने के बारे में मैं इतना कहूंगी कि ये गाना खूबसूरत तो था ही, लेकिन इसे इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा वायरल कर दिया, लोग पहाड़ की रील बना रहे तो इस गाने को लगा रहे, लोग अपने कपड़ों की रील बना रहे हैं तो इसे लगा रहे, मतलब हर इंसान इसको अपने फोटोज और स्टोरीज में लगा रहा है। ख्वाब देखूं बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम द मूवी एक दिन।

दोस्तों वैसे तो वीकेंड है और मुझे ये आपको बताना नहीं चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे आपको मंडे को बताना चाहिए। बट क्योंकि ये जो मोटिवेट मैं आपको करने वाली हूँ वो रिलेटेड है किसी ऐसी लेडी से जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में है, और आज हम गानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स आज बता दूं तो अच्छा रहेगा। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलर स्विफ्ट, क्योंकि फाइनली उन्होंने $2 बिलियन की नेटवर्थ अक्यूमुलेट कर ली है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा क्या मतलब, तुम हमेशा हमें कहती हो वीकेंड पे चिल करो, रिलैक्स करो। हमें चिल रिलैक्स करवाती रहेगी, वहां पे टेलर स्विफ्ट $2 बिलियन की वर्थ हो गई उनकी। ओह निविया शर्मा, तुम मोटिवेट करती हमें तो ज्यादा अच्छा रहता, तो हम भी मिलीनियर तो बन जाते, बिलीनियर नहीं बनते तो। वेल, बात तो सही है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब मंडे का इंतजार क्यों करना है, आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर दिया जाए। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि टेलर स्विफ्ट की जो पॉपुलैरिटी है उसको बीट करने के लिए फीफा वर्ल्ड को भी बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। या यू हर्ड मी राइट, अभी दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो लिटरली अपनी पतलून बचाने की कोशिश कर रहा है, और आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा यू आर सो फनी। वेल या आई एम फनी इन दैट वे, बट फीफा वर्ल्ड कप की टिकट्स बेचने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि उन्होंने रख दिया था उसे अमेरिका में। सो अब उसके बाद जो है उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी, और ऐसे में बड़े बड़े स्टार्स, और सबसे बड़ी स्टार तो टेलर स्विफ्ट है ही, मतलब शी इज द ओनली फीमेल सिंगर सेलिब्रिटी म्यूजिशियन जिन्होंने $2 बिलियन की नेटवर्थ को क्रॉस कर लिया है। सो फीफा वर्ल्ड कप भी उसे बीट नहीं कर पा रहा है टेलर स्विफ्ट की पॉपुलैरिटी को। इमेजिन। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्विफ्टीज। या अगर आपको नहीं पता था, टेलर स्विफ्ट के जो फैंस हैं वो अपने आपको स्विफ्टीज कहते हैं, और वो टेलर स्विफ्ट को मदर कहते हैं। या मदर। जी हाँ, सो यहां पर मैं इतना ही कहूंगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू टेलर स्विफ्ट एंड टू ऑल द स्विफ्टीज। खुश हो जाइए, मजे में रहिए, क्योंकि ये महीना ना सिर्फ उनको बिलीनियर बनाने के लिए याद रखा जाएगा बल्कि उनकी शादी के लिए भी याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी महीने उनकी शादी भी है। Yep, she's getting married. So let's see क्या बनता है। लेकिन यहाँ पर हम आगे की ओर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम आपको गाना सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही मजेदार है, और वो है ऊंचा लंबा कद। आप लोग बोलो कि निवेश शर्मा ये तो बहुत पुराना गाना है, क्या सुना रही हो तुम हमें? ना, ये नई मूवी का गाना है, वेलकम टू द जंगल मूवी का। जी हाँ, जो कि 26 जून को अपेरेंटली रिलीज होगी, और इसमें अक्षय कुमार है और दिशा पाटनी इसमें आपको नजर आएगी, नॉट द कैटरीना कैफ बट दिशा पाटनी, दिशा पाटनी। सुनिए, उसका अलग सा वर्जन है बट पुराने गाने को ही रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा गाना तो मुझे गाली मत दीजिएगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
6: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा आगे की क्या प्लान है? वेल, आगे का प्लान तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि हमारी जो ये लिस्ट है ये शुरू हो चुकी है और ये आगे आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही थी और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी आपको पता है, पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक इवेंट के दौरान सो गए थे। जी हम आप सारे के सारे लोग ओवल ऑफिस में मौजूद थे, प्रेस मौजूद थी, सब कुछ था और वो एकदम से झपकी लेते हुए रिकॉर्ड कर लिए गए। जी हाँ, ऑफ कोर्स अब उसके बाद जो है वो बहुत सारी जो है वो डिबेट छिड़ गई है कि ऐसे कहते हैं कि ये बंदा सोता नहीं है। हाँ, बेड पे नहीं सोता होगा लेकिन यहाँ पे इवेंट में तो सो गया ना। बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, मुझे ऐसा लगता है वो हर किसी ने कभी ना कभी तो किया, मतलब आपने भी किया होगा। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिसने कभी ना कभी, मतलब जिंदगी में एक दो बार तो एटलीस्ट किया होगा कि आपने अपनी मीटिंग के दौरान या फिर आपको जब कुछ ऐसा इवेंट में हो आप या मीटिंग में हो और बहुत सारी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात हो रही है और आपकी झपकी लग गई है वहां पे, मतलब आप सो रहे हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना एक टैलेंट होता है, वो सोते हैं पर आंखें खुली रख के, और वो टैलेंट मास्टर करने के लिए ना आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये किसे, मतलब कहाँ देख लिया तुमने आंखें खुली रख के सोते हुए लोग। वेल, आपकी आज जनीवे उनमें से एक है। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज के टाइम पे एक लेक्चर में मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी। जी हाँ, खाकर, जब आप लंच करते हो उसके बाद आपको नींद आती है। मैं तो बहुत ही ज्यादा सोतेली इंसान हूँ, सोतेली इन दैट भी नहीं, मतलब सोने वाली, सोना पसंद करने वाली। एंड मुझे आज भी याद है कि मैं बॉस, मेरे को आंखें खुली रख के मेरे को नींद आ जाती थी और लोगों के हिसाब से मैं बैठी हुई हूँ, मैं अवेक हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं सो चुकी थी, दिमाग सो रहा है, आंखें खुली हैं। आप मुझे बताइए क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है? और मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो लिटरली एकदम खतरनाक जो है उनका नाम हो गया है कि बंदा इवेंट पे सो गया, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसा आपने तो किया होगा, एक आध बार तो सबने किया होता है राइट, कि सिर्फ मैं ही अकेली हूँ? डोंट टेल मी, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, बट ये वाली इसमें ना मुझे हमदर्दी हो रही थी उस इंसान पे कि कोई नहीं यार, कभी ना कभी तो ऐसे इवेंट पे सो जाता है इंसान, ऐसी क्या बात हो गई। जी हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और गाना आपको सुनाते हैं जो कि है दिल वाले चोर, और ये है गाना मजेदार पति पत्नी और वो दो का।

जी हाँ दोस्तों, और अब जरा बात कर लेते हैं सिनेमा की, और ऐसे सिनेमा की जिसने सबको ऑब्सेस्ड कर दिया है। उसका खुद का नाम ही ऑब्सेशन है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा सुना सुना लग रहा है, मतलब एक मूवी है जिसके बारे में हम भी काफी सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इसके बारे में अभी तक एक बारी भी बार नहीं सुना। लेकिन इनकेस आपने नहीं सुना, मैं आपको बताने के लिए यहां पर हूं। ऑब्सेशन एक मूवी जो कि सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है, जो कि थिएटर्स में लगी हुई है, और अपेरेंटली बहुत ही कम बजट में बनाई गई ये मूवी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है कि मैं आपको क्या ही कहूं। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये मूवी जो है वो बहुत ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक बन गई है, और इनफैक्ट 1400 करोड़ रुपीज, आई एम टॉकिंग इन रुपीज नॉट इन डॉलर्स, बट इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन लगा था। $1 मिलियन में ये मूवी बनी थी, और उसके बाद ये लिटरली ऑलमोस्ट 200 मिलियंस कमा चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो ऑब्सेशन जो है वो, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है, लेकिन लोग जो हैं वो इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लग रही, उनको लग रहा है कि ओवर हाइप्ड है। लेकिन अगेन, इट्स अ सुपर नेचुरल हॉरर मूवी, एंड इफ दैट इज योर जॉनर, गो फॉर इट। लेट मी नो आपको कैसे लगे। इसमें काफी सारे डिस्टर्बिंग सीन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सो अपने आप पहले ट्रेलर देखिएगा और फिर ही जाइएगा, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट स्केयर्ड और एनी। ओके, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, जो कि मूवी का है, ये मूवी रिलीज हो गई है इसी हफ्ते, मैं बात कर रही हूं, है जवानी तो इश्क होना है, और इसका गाना है व्याह करवा दो जी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों अब आपको ऑफिशियली बता देते हैं क्या क्या आप थिएटर्स में देख सकते हैं इस हफ्ते यानी कि इस वीकेंड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस मूवी से जो इस ही वीकेंड रिलीज हुई है, यानी कि पिछले कल रिलीज हुई है फ्राइडे को। तो ऑफकोर्स उसमें सबसे पहले नाम आएगा है जवानी तो इश्क होना है। मैंने पहले बताया था कि वरुण धवन डेविड धवन के उस मैजिक को वापस लेकर आए हैं। जी हाँ, डेविड धवन ने फिर से मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं हमेशा से, एक बढ़िया सी रोम कॉम। जी हाँ, और इसमें वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी आपको नजर आएंगी। जी हाँ, ऑफकोर्स इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगी, लेकिन या इट कैन बी अ गुड वन टाइम वॉच फॉर यू। तो इसी के साथ ये तो मैंने आपको बता दिया, अब अगली मूवी के बारे में बात करते हैं। अगली मूवी है पेडी। जी हाँ, पेडी जो है वो भी रिलीज हो चुकी है, और ये मूवी है रामचरण तेजा और साथ में जानवी कपूर की। सो ऑफकोर्स इट्स अ पैन इंडिया मूवी, हैवी बजट मूवी, एंड इट्स एक्शन ड्रामा स्पोर्ट्स मूवी। सो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, एंड इफ इट्स अबाउट स्पोर्ट्स आपको पता है आपको मोटिवेशन भी मिलने वाला है बहुत सारा, एंड इफ यू आर इन टू दैट जॉनर गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगेगी। बट आई कैन से वन थिंग कि रामचरण इज अ गुड एक्टर, सो यू कैन गो फॉर हिम। यहां पर इसी के अलावा एक और मूवी जो है जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चांद मेरा दिल। चांद मेरा दिल जो है वो थोड़ी हैवी मूवी है, जी हाँ, आपको रुलाएगी, आपको ऐसा फील करवाएगी, होलो फील करवाएगी, लेकिन आपको लगेगा कि ओह, मतलब गाने बहुत खूबसूरत होंगे, आपको लगेगा कि क्यों दो इंसान जो प्यार में वो मिल नहीं जाते अच्छे से, जी हाँ, क्यों इतनी रुकावटें हैं। यू आर गन फील दैट, क्योंकि चांद मेरा दिल इज लाइक दैट। लक्ष्य के साथ अनन्या पांडे इसमें आपको नजर आने वाली है, और ये मूवी भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ पति पत्नी और वो दो भी आप देख सकते हैं, अगेन अ रोम कॉम, आयुष्मान खुराना के साथ, वामिका गाबी, सारा अली खान, एंड साथ में है उनके, जी हाँ, साथ में है उनके बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। और ये सारी की सारी मूवीज जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मूवीज है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन मैं पहले अब आपके लिए गाना प्ले करने वाली हूँ, जो कि है हमारी लिस्ट के पांचवें नंबर का गाना। जी हाँ, हमने अपनी आधी लिस्ट को कम्प्लीट कर दिया है, आधी बची, और उसमें से फिफ्थ नंबर का गाना है गहरा हुआ, फ्रॉम द मूवी धुरंधर, नॉट द रिवेंज बट द फर्स्ट वन।

आपको पता है मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है इस गाने में? जी हाँ, और वो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये गाना पूरा ही बहुत खूबसूरत है, फिर चाहे इसके बोल के बारे में हम बात करें, इसके लिरिक्स, इसकी धुन, सब कुछ। लेकिन गाना खत्म होता है, मतलब लिरिक्स खत्म होते हैं और एंड में एक बड़ी ही खूबसूरत सी ट्यूनिंग आपको सुनने को मिलती है। एंड यू नो व्हाट, ये बहुत पहले से होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने सबसे पहली बार सुना था हमें तुमसे प्यार कितना। गाना पूरा खत्म हो जाता है, लिरिक्स खत्म हो जाते हैं और फिर एंड में एक फ्लूइड की ट्यूनिंग जो है वो आपको सुनने को मिलती है और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है, गहरा हुआ में भी कुछ ऐसा ही आपको लग रहा है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या आप देख सकते हो इस वीकेंड बाहर जाकर, थिएटर्स में जाकर। थिएटर आउटिंग्स आर दी बेस्ट, राइट? सो मैंने आपको बॉलीवुड मूवीज के बारे में, हिंदी मूवीज के बारे में बता दिया है, इंडियन मूवीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जरा बात करते हैं हॉलीवुड की। सबसे पहले तो ऑब्सेशन कैन बी योर चॉइस, मैंने पहले ही बता दिया, इट्स अ सुपर नेचुरल हॉरर मूवी एंड प्रेटी मच एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट दैट मूवी। सो ऑफकोर्स आप ट्रेलर देखिए और फिर अगर आपको लगेगा कि ओके आई कैन हैंडल दैट, देन ओनली गो, अदरवाइज रहने दीजिएगा। इसी के साथ एक और मूवी जो आप देख सकते हैं वो है ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये एक्शन एडवेंचर फैंटेसी साइफाई मूवी आपको मिल सकती है देखने को। गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। और अगेन इट्स अ हॉलीवुड मूवी। और इसी के साथ जो आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो जाके वो है रिटर्न ऑफ द जंगल। जी हाँ, आपने सही सुना, रिटर्न ऑफ द जंगल इज एन एनिमेटेड मूवी जो कि एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा से भरी हुई है। आपको अच्छी लगेगी और आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी, सो यू कैन गो फॉर इट। एंड या दैट्स अबाउट इट। ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। अब इनमें से आपको क्या चूज करना है और क्या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। ट्रेलर देखिएगा पहले और फिर आप डिसाइड कीजिएगा और फिर जाइएगा और अपना रिव्यू या कीमती रिव्यू देना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर अगला गाना जो कि है कौन से नंबर का, चौथे नंबर का आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा तीसरे नंबर के गाने पर। और इतना मैं कह सकती हूँ कि ये जिस मूवी का गाना है उस मूवी ने बवाल मचा दिया है। मतलब अभी मूवी आई नहीं है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हीं से बवाल मच गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कॉकटेल 2। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉकटेल 2 का गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि तीसरे नंबर पर है। इसमें है शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और साथ में कृति सेनन। एंड आई हैव टू से कृति सेनन is looking damn hot, like literally very very hot. और यहां पर promotional activities के लिए भी जो भी उनको style कर रहा है, I have to say they are doing great job. यहां पर cocktail 2 जो है वो जल्द ही आने वाली है, और जब वो आएगी, I mean 19th of June को इसका release है, लेकिन उससे पहले जो है वो vibe बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है, और इसके गाने जो है वो बवाल मचा रहे हैं। जब इसका पहला गाना आया था जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, और उसका नाम है जब तलक, लेकिन एक और गाना है इसका जो कि टॉप पर है। जी हाँ, कॉकटेल 2 का ही गाना है जो आज टॉप पर है, यानी कि नंबर वन है। वो दूसरा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग गाना है, लेकिन ये वाला जो है ये भी तीसरे नंबर पर है, विच इज जब तलक। सो या, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है झलक कॉकटेल 2 की, तो जरूर देखिए, चेक इट आउट एंड लेट मी नो क्या आप भी एक्साइटेड है, क्योंकि कॉकटेल ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क, ऊंचा बेंचमार्क सेट किया है। क्या ये लोग पूरा कर पाएंगे, वी डोंट नो येट, बट इतना हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लग तो अच्छा रहा है जो भी है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं नंबर 2 और नंबर 1 सॉन्ग की तरफ। और यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज, मतलब कल की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और आपको तो पता ही है सोशल मीडिया पे इतने भयंकर भयंकर मीम्स देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो उसमें से एक बड़ा जबरदस्त था, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और वो था कि टीचर पूछती है स्टूडेंट से, मतलब टीचर पूछती नहीं है, टीचर कहती है वन सिगरेट टेक्स 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, टीचर कहती है स्टूडेंट से वन सिगरेट टेक्स 15 मिनट ऑफ योर लाइफ। तो स्टूडेंट सामने से कहता है एंड योर क्लास टेक्स 45 मिनट्स फ्रॉम मी। या और जितने भी बैक बेंचर्स है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। मतलब कहां से आती है ऑडेसिटी ऐसी ऐसी चीजें बनाने की। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने सच में ऐसा बोला होगा, बट वी डोंट नो, जेंजीज आर जेंजी और दे कैन डू एनीथिंग। सो या आप मुझे बताइएगा, क्या आपने भी किसी ऐसे स्टूडेंट को झेला जो कि कुछ भी बोल देता था, इन केस यू आर अ टीचर। या दैट्स अबाउट इट। इसी के साथ अगला गाना जो कि है दूसरे नंबर का गाना, और वो है मस्कारा। और ये गाना सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। एक तो बहुत प्यारा सा है और इसमें है शर्वरी जो कि बड़े प्यारे प्यारे यू नो एक्सप्रेशंस के साथ आपका दिल लूटने के लिए तैयार बैठी है।

जनो सोन के साथ अब वक्त हो गया है आपको नंबर वन सॉन्ग सुनाने का, क्योंकि वो गाना है माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, और साथ में आपसे विदा लेने का भी. जी हाँ, जा रहे हैं हम. ये है नंबर वन गाना और सुनिए इसको, मजे कीजिए. वीकेंड है, छुट्टी है, तो छुट्टी को आराम से मजे से सुकून से सेलिब्रेट कीजिए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए और मस्ती कीजिए, गेट टूगेदर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो सीखे. बेसिकली यू कैन डू लिटरली अ लॉट, सो डू व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज़ इट्स वीकेंड. एंड या, दैट्स अबाउट इट. मिलेंगे अब आपसे इवनिंग वाइब में मंडे को. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. ये लास्ट सॉन्ग, नंबर वन सॉन्ग माशूका, लाइक लिटरली द मोस्ट टेम्पटिंग सॉन्ग फ्रॉम द लिस्ट.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द
3: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
4: Containers
3: for 10 cents
4: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
5: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
6: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.